0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री

0: मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

उस परमपिता परमात्मा दे दरबार लगवारियां हाजरी भक्ति संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।

0: जी हाँ, तो अच्छे अच्छे दिन दे विच प्रोग्राम दी हो गई है। अच्छी अच्छी शुरुआत इस गीत दे नाल जिसनू गाया सी आशरा भोंसले होना ने। तो लो जी, अज का दिन ये कहता है कि जेडे लोग अपने सुपनिया ते विश्वास रखते ने ना, उ एक दिन इतिहास बनाते ने। सो सुपनिया दे विच विश्वास ते उना दे लई कीती होई मेहनत हमेशा ही रंग लियांदी है। ते रंग ये वाला हमेशा ही सानू खुशी दे के जांदा है। सो मेहनत तो घबराना नहीं, ते पिछे मुड़ के आना नहीं, ते फिर चलदियां ही रहन ये कोशिशां, ते असी अगे वधदे जाइए। बस यही दुआवां, यही अरदास। चढ़दी कला दी जदों अरदास हुंदी है ना, ते फिर दिल जड़ा वो अपने आप ही खुशगवार हो के उदे विच लग जांदा है जिदे त मेहनत दी लोड़ हुंदी है। खैर, प्रोग्राम दे विच लोड़ हुंदी है समय समय ते खूबसूरत गीतां दी। ते लो जी, एक होर खूबसूरत गीत ते फिर दसदे हां अज दा ये दिन इतिहासिक मायना तो किवें खास है।
1: हां जी
2: बीबा जी, ये गाना तुसी गा रहे सी?
1: नहीं जी, रूप ते बसंत गा रही सी।

इंटीग्रेशन सेमिनार में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस प्रणाली का शुभारंभ कर दिता है। नई व्यवस्था च हुन अलग अलग चल रहे पुलिस दे CCNS अदालतों दे CIS ते ई प्रिजन सिस्टम नू आपस दे विच जोड़ दिता गया है। इस दे नाल FIR संबंधी जड़ी CNI नंबर है CNR नंबर इनू रियल टाइम दे नाल लिंक किया गया है। हाई कोर्ट दे मुताबिक इस प्लेटफॉर्म दे नाल हुन तक 42 लाख तो ज़्यादा ई समन ते नोटिस जड़े ने डिजिटल रूप दे विच भेजे जा चुके ने ते उना दी पावती भी कोर्ट नू मिल रही है। जी हाँ, ते बड़े जड़ी केस ने उना दी समरी भी हुन मिंटां दे विच जड़ी है उपलब्ध हो सकेगी। सो डिजिटल टेक्नीक ये सारा कुछ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुना दा जड़ा सुपना जड़ा टेक्नोलॉजी दे विच अगे वधन दा ये सुपना बिल्कुल साकार भी हो रहा है ते होर अगे अगे अपने पड़ाव जड़ा उन्हां नू पूरा कर रहा है। डिजिटल इंडिया ते डिजिटल इंडिया दे विच सब कुछ डिजिटल हुंदा होया ते तकनीक हमेशा ही अगे लेके जांदी हुई। सो इस तकनीक दा अपने बच्चियां दे तक भी जड़ा इस्तेमाल है उहदे ते भी गौर फरमाउणा है तां कि उह टेक्नीक नू वरदान लेके चलन, ना कि इस नू इस तो कुछ गलत सिख्या लैन। ते अज दा दिन असी इसीलिए मना रहे हां क्योंकि टेक्नोलॉजी जिहड़ी है उहदे लई हमेशा ही वेलकम ते होना चाहिए है, नाल नाल उसका सही इस्तेमाल ते सारियां सही जानकारियां। सो विश टेलीकम्युनिकेशन ते इंफॉर्मेशन सोसाइटी दिवस जिहड़ा कि असीं अज मना रहे हां उस नूं मनाउंदे होए सलाम करदे हां इस टेक्नोलॉजी नूं जिहड़ी दूर बैठियां भी ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।

बिल्कुल जी, टेक्नोलॉजी कहती है कि आ जा मेरे पास, पर वो सड़ी थी है कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी दा किन्ना फायदा चकना है। टेक्नोलॉजी जिहड़ी है वो सानू कई गल्लां दे विच वरदान है, क्योंकि टेक्नीक दे नाल ही जिहड़ी सारी दुनिया है इस वेले चल रही है। सो जिन्हां ने इस टेक्नीक दे विच अपना योगदान पाया, उन्हां सबनों सलाम ते शाबाशियां इस टेक्नीक दे लई, इस टेलीकम्युनिकेशन दे लई, इस इंफॉर्मेशन दे लई।

बिल्कुल दोस्तों, शाबाशियाँ। ती शाबाशियाँ मेहनत उदो ही कीती जा सकती है जदों साडी कोल सेहत दी दौलत होएगी, ते यही दौलत सब तो वड्डी है। ते समय समय ते वख वख दिनां दे राही सेहत प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। ते अज दा दिन यानी कि 17 मई जिसनों असी मना रहे हाँ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे दे वजों। इस दिन का मकसद लोगों नूं उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे जागरूक करना। जदों खून का दबाव ना

जी हाँ, जदों खून का दबाव नॉर्मल तो वध ते फिर ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन क्या जाने वाला, संतुलित खुराक दे नाल बहुत फायदा मिल देगा। जिस तो बचना है नियमित कसरत जिहड़ी है वह करनी पेगी, तनाव तो दूर होना पेगा, ज़्यादा नमक ते जंक फूड तो बचना पेगा, समय समय से प्रॉपर जिहड़ी चेकिंग है ब्लड प्रेशर की वह करवानी पेगी, क्योंकि जे दिल खुश, दिल खुशहाल, दिल सेहतमंद तो सारिया चीज़ा बखूबी सैटल्ड, तो दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक।

0: प्रोग्राम चल रहे जी सोनी सवेर जिहड़ा कह रही है कि हुण कुछ सिरे खास सुनेहे ने ओह भी तुहाडे तक पहुँचाने ने। तो बिल्कुल जी इन्हां सुनेहां तो बाद प्रोग्राम दे विच वापस आ के करदी हाँ तुहाडे नाल होर गलबात ते जानकारी दे सिलसिले मनोरंजन दे सिलसिले नालों नाल।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की

0: स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदे।

0: लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च

0: रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर

0: क्या करेगी ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
1: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हैं मसीही भजन।

0: शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च हुणे तुसी पंडित हरविंदर कुमार शर्मा होणा दा सितार ते वजाया राग भटियार सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे साढ़े नू होए ने पेश है जी प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।
1: ज्ञान विज्ञान दा ए अंक लैके असी हाजिर हाँ। सारे सुनन वाले नू नमस्कार। अज इस विच कौमांतरी दूर संचार ते सूचना समाज दिहाड़ा इस विषय ते वार्ता होएगी प्रोफेसर रविंद्र कुमार होरां दी। इस अलावा विज्ञानिक तत्थ ते विज्ञान नाल जुड़ियां खबरां भी होणगियां। शुरुआत करते हाँ विज्ञानिक तत्थ नाल। आम ज्ञान एक बच्चा क्लास विच सब तो उपर है पर उसका कोई दोस्त नहीं है कि ये IQ ते EQ विच अंतर है। असी एक बच्चे नू तेज दिमाग वाला मानते हाँ जेकर वह क्लास विच सवालों के जवाब जल्दी दे सकता है ते गुंजलदार गणितिक समस्यावां नू हल कर सकता है। ये तेज बुद्धि साडा इंटैलीजेंस कोशेंट बढ़ाती है। एक अर्थ विच IQ साडे दिमाग की सोचन ते याद रखन की समर्था नू दर्शाउंदा है। जदों तुसी किसी विज्ञानिक प्रयोग नू समझते हो जा फिर बुझारता नू हल करदे हो तो तुसी अपने IQ की वरतों कर रहे हो। इतिहासिक तौर पर लोग मानते सन कि एक व्यक्ति का IQ जिन्ना उच्चा होगा वह जिंदगी विच उन्ना ही सफल होगा। कोई कह सकता है कि यह मुख तौर पर साड़ी अकादमिक सफलता नू मापता है। हालांकि की तुसी कदे सोचा है कि क्लास विच सब तो वध अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हमेशा सारे नाल दोस्ती क्यों नहीं कर सकता जां अपने गुस्से नू प्रभावशाली ढंग नाल प्रबंधन करने लई क्यों संघर्ष कर सकते ने। इहो थां है जिथे दूजा ते दलील नाल वधेरे महत्वपूर्ण कारक खेड विच आउंदा है। भावनात्मक कोशेंट EQ जिस नू भावनात्मक बुद्धि भी कहा

वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सोसाइटी डे संसार अते भारत देश दे वासियां दी भलाई लई मेहनत करदे रहण दा अहिद है। हर साल 17 मई नूं मनाया जाण वाला वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सोसाइटी डे सिर्फ एक आम दिन नहीं सगों ए आधुनिक समाज दी तरक्की अते टेक्नोलॉजिकल विकास दा प्रतीक है। 2026 विच इस दा थीम डिजिटल जीवन रेखा आपस विच जुड़ी दुनिया विच मजबूत दृढ़ता रखिया गया है, जो इस गल नूं उजागर करदा है कि डिजिटल सहूलतां अज दे युग विच साडे जीवन दियां जरूरी अंग बन चुकियां हन। इस तों बिना जीवन अधूरा जापदा है। इस दिन दा मूल उद्देश संसार अते जानकारी तक हर एक दी पहुंच नूं यकीनी बनाउणा अते डिजिटल डिवाइड नूं घटाउणा है। इस दिन दी शुरुआत 1865 तों होई जदों इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन दी स्थापना कीती गई। ए यूनियन संयुक्त राष्ट्र दी एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो विश्व पद्धर ते टेलीकम्युनिकेशन नीतियां म्यार अते विकास नूं प्रोत्साहित करदी है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन विच 194 नैशनल गवर्नमेंट्स अते 1000 तों उपर कंपनीज ते ऑर्गेनाइजेशन हन जो ग्लोबल कनैक्टिविटी नूं अगे वधाउंदियां हन। ITU दा हैड ऑफिस जिनेवा विच है। 2025 विच ITU ने अपनी 160वीं स्थापना दिवस नूं मनाया है, जिस विच विशेष तौर ते हाईलाइटिंग इट्स लोंग स्टैंडिंग रोल इन एडवांसिंग ग्लोबल कनैक्टिविटी अते अंतरराष्ट्रीय सहयोग नूं वधाउण दा संदेश दित्ता है। इस दिवस नूं मनाउण दा मुख मकसद दुनिया विच अवेयरनैस ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट यूज इंटरनैट एंड ICTs एंड आलसो वेस्ट टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। टेलीकम्युनिकेशन डे ता शुरू तो ही विश्व भर विच मनाया जा रहा सी, पर वर्ल्ड इनफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2006 तो बाद मनाना शुरू किया है। इस तरह साल 2006 तो दोवें दिवस 17 मई नूं इकट्ठे ही मनाए जाते हैं। इस दा मंतव रिफ्लैक्टिंग द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जिमें कि इस साल 2026 विच 161वां दिवस संबंधी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन संसार विच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नूं होर लचकीला अते मजबूत बनाउण दा सुनेहा दे रही है, जानी कि टू स्ट्रेंथन रेजिलेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स कनैक्टिविटी पबलिक सर्विसिज एंड एमरजिंग रिस्पोंस। जेकर असी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करते हाँ तो इस विच मुख डिजिटल लाइफलाइनस का जिक्र आता है। डिजिटल लाइफलाइनस विच टेरेस्ट्रियल नैटवर्कस, जमीनी नैटवर्कस, सबमरीन केबल्स, सैटेलाइट्स ते डाटा सिस्टम्स आदि आते हैं। रोजाना अदृश्य डिजिटल सिस्टम्स इनविजिबल डिजिटल सिस्टम्स हैल्प कीप द वर्ल्ड रनिंग। ये डिजिटल सिस्टम्स सानू वार्न द कम्यूनिटीज वैन डिजास्टर्स अप्रोच, गाइड नेविगेशन अक्रॉस लैंड सी एंड एयर, कैरी द डाटा दैट कनैक्ट्स द कॉन्टीनेंट्स। सो इस वार दा वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सोसाइटी डे इस नूं ही समर्पित है, पर आज इंटरनेट सैटेलाइट ते वायरलेस टेक्नोलॉजी ने दुनिया नूं एक ग्लोबल विलेज विच बदल दिता है। आधुनिक युग विच टेलीकम्युनिकेशन दी भूमिका बेहद बड़ी है। इंटरनेट अते मोबाइल फोन ने सिक्ख्या, सेहत, व्यापार अते मनोरंजन दे खेत्रां विच क्रांति लियांदी है। ऑनलाइन सिस्टम नाल विद्यार्थी घर बैठे ही विश्व पद्धरी ज्ञान प्राप्त कर रहे हन। सेहत खेत्र विच टेलीमेडिसिन दे जरिए डॉक्टर दूर बैठे मरीजां नाल गलबात अते इलाज कर सकदे हन। ई कमर्स प्लेटफार्मां ने व्यापार नूं आसान ते तेज बनाया है। सोशल मीडिया ने लोकां नूं एक दूजे नाल जुड़न दा नवां माध्यम दित्ता है। भारत दे उद्योगिक इतिहास विच जेकर किसी खेतर ने सब तो तेजी नाल तरक्की कीती है तां ओ टेलीकॉम सैक्टर ही है। अज ए खेतर नवे भारत दी रीढ़ दी हड्डी बन जा रहा है। मौजूदा समय विच देश दी कुल GDP विच टेलीकॉम दा हिस्सा 14-15% है, पर अगले दहाके विच ए 20% तक पहुंचण दी उम्मीद है। 5G टेक्नोलॉजी दी सफलता तो बाद हुण

0: प्रोग्राम चल रहा जी हेलो फरमाइश ते अगली हेलो किना दी है आओ जान दे आ हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: हां जी कुमार बोल रहा हूं कंडी से गोचा तहसील मगेरिया डिस्ट्रिक्ट शहर से।
0: स्वागत है जी साढ़े पहले कॉलर जिन्हों की आवाज़ भी पहुँच रही है सारे तक। तो दसो जी तुहाड़ी पसंद का गीत केड़ा पहुँचा दिए
1: जादों के मौसम का सुना दो जी अनुराधा पोटवाल की आवाज़।
0: ठीक है जी अनुराधा पोटवाल होना की आवाज़। ठीक है जी लो जी इन्हों तक इन्हों की पसंद का गीत पहुँच रहे। जेकर तुसी भी अपनी पसंद का गीत सुनना है तो 081 3142 173 नंबर कर रहे इंतजार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेडा नूं उत्साहित करन लई आकाश।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रोग्राम चल रहे जी। हेलो फरमाइश ते अगले कॉलर पहुंच गए नहीं सर कोल। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी।
1: भाजी कृष्ण सिंह बोल रहे हैं जी, पिंड छत्तीस वाला जिला फाजिलका जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी।
1: धन्यवाद जी।
0: दसो जी गीत केड़ा सुनोगे?
1: गीत सुना दो जी, प्यार का तोहफा, तोहफा फिल्म का गीत जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन कॉल मिलाने के लिए।
1: धन्यवाद जी।

0: ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੀਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

0: भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जिला संगरूर तो, सिद्धार्थ नगर दरियापुर भाबली तो, गजानन येले नवदीप विशुदीप ते अशोक येले, करनैल सिंह बट्टू गुरफतेह सिंह हरनास कौर मोहब्बत नगर कपूरथला तो, चक पंच एमडी पतरोड़ा तो, मंगल चनागल श्रीमती रोशनी चनागल अंकुर इंदू ते सुनील चनागल, पिंड नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो, वेद ते अलका मिड्डा, पप्पू राजा खुशदिल संगीता पप्पू स्माइल खुशदिल हसमुख संजीव सुनीता आरजू महक ते पूरा ही खुशदिल परिवार, बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय नमन ते अपार ढिंगिया, पिंड कबूल शाह कुब्बन जिला फाजिल कातो वधावा सिंह बलकरन तनु पवि जस्सी ते परिवार, पिंड चौधरी वास हरियाणा तो मांगे राम सतौड़ रितु हिमानी शुभम यश कुमार हरजीत कैंथ मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो, सुदर्शन पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन रजिंद्रजीत शाह, साधुल शहर तो राजस्थान तो राम कुमार रेवाड़ ते चंद्रकला, मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकपाल सिंह हठूर रजिंदर अमनदीप सिमरजीत कौर हठूर, पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो सोहन लाल ओम प्रकाश शगुन लवकुश छत्रपाल सिंह खंगारवा रजिंदर सिंह बाबू सिंह मैने वाला काका भट्टी, पिंड कमाल वाला तो गुरमेत सिंह विरक ते परिवार, आदर्श नगर मलोट तो राज मीना योगेश मैंडी सौरव साइना निवान शर्मा, खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू लक्षे लाडो कोयल पापा नानक चंद, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष कोयल डुगू ते भाविक सिक्का, पिंड डाखाना मिडू खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहिब तो कृष्ण राम प्रताप ज्योति सुमन ते मनीषा, हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल नवनीत पप्पी सोनू भाटिया जमशेदपुर तो, जसपाल भारती वीना सुरेंद्र मनदीप डिंपल युवराज हरप्रीत शिवाय दानेवालिया साउथ एवेन्यू अबोर तो, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो, ओम प्रकाश राय उषा अमित हैप्पी जिला गाजीपुर तो, प्रतीक रोशनी राय प्रांचल राय ते सारा ही राय परिवार। आओ सुनते हैं सब दी फरमाइश ते गीत। आओ सुनते हैं गीत, आवाज है एस कांखोरां दी।

उठी बुलंद शहर तुम। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहनी, मोहिनी ऋतिक ते बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश तो। प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा, अरमान, अनन्या, अनुष्का, राकेश कुमार, ममता रानी खुराना परिवार, पिंड बिल्ली मारतों। सेक्टर 5 कुडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित ते बेबी करवी। दादा बाबू रोड गिरडी ही झारखंड तो मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज हसन, बाबू ऐद मिफरा नास ते बेबी चाहत, पिंड चांद मारी तो मंगत राम जगदीश, संदीप, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण, प्रतीक ते परिवार सारा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान तो। पिंड कुणियाणा जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह, मनजीत कौर, दपिंदर, गुरशबद, जीत सिंह, सारा ही बराड़ परिवार, सुखदेव सिंह, बुरज हनुमानगढ़ तो, कुलवंत गिल मलोट तो।

सेक्टर 5 कुडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित ते बेबी करवी, दादा बाबू रोड गिरडी ही झारखंड तो मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज हसन, बाबू ऐद मिफरा नास ते बेबी चाहत पिंड चांद मारी तो मंगत राम जगदीश, संदीप, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण, प्रतीक ते परिवार सारा, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान तो, पिंड कुणियाणा जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह, मनजीत कौर, दपिंदर, गुरशबद, जीत सिंह, सारा ही बराड़ परिवार, सुखदेव सिंह बुरज हनुमानगढ़ तो, कुलवंत गिल मलोट तो, पिंड सावंतखेड़ा मंडी डावली तो किशन लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र ते परिवार, चक 14 PSP जिला श्रीगंगानगर तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप, जसकरण, हरदीप, मंदराज, विरक ते परिवार इन्हों का, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश तो, सुरेश उर्मिला, दीपक स्वाति गाजीपुर उत्तर प्रदेश तो, जायसवाल परिवार सारा, गमरिया जमशेदपुर तो रोहन आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली तो विजय ते सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर तो मराहू देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली तो सुंदर ते सुमन, मनीला फिलिपन तो मदन मोल लहर, सरबजीत, संजू, नितिका, अजय, एंजल, लाटला पोता, अर्नव लहर, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, विजय कुमार, सारा परिवार, पिंड बाजितपुरा फाजिलका तो, मेन बाजार मंडी लादुका तो, फाजिलका तो वरिंदर, रेखा, प्रीक्षित, प्राची ते सारा ही कालड़ा परिवार, पिंड कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो, गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रशनी, आकाशिप, अनत ते पोत्रा, गुरशबद, विक्की मल, संतोष मल, रोनित पूरा मल परिवार, पिंड साबुआणा जिला फाजिलका तो, चक 15 PS जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर, गुरमन्नत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तो, आदर्श पाल वैंकूवर कनाडा तो, रॉबिन सिंह जोसन ते परिवार, बलकीत सिंह मेन बाजार गुनियाणा मंडी तो, जोगिंदर, सुरजीत, कलविनीत सिंह, जगदीश कुमार मक्कड़, अरविंद, नीरज, भुवनपुरा मक्कड़ परिवार, कुलभूषण, कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तो, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस, खातून, वासदेव, छाबड़ा, अंश, दिव्यांशी, चिराग, साजन, लालड़ू मंडी तो, आओ सुनते हैं सब दे फरमाइश ते गीत, आवाज़ है सुरेंद्र कौली दी।

सार्थक शर्मा। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नास, नवाज शेख, तानिश अमन अफरीदी, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो। मोहाले तो अमरदीप सिंह सैणी, लाभ कौर, जीवनजोत कौर सोनी, सैवी निदिश सैणी कनेडा तो, सारा ही सैणी परिवार। मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकर, ये सबने उत्तर प्रदेश तो। सुनते हैं सब की फरमाइश से गीत। आवाज़ है गीता सैलदार की।

चल गगन, प्रिंस जीवन सिंह ते सारा ही बुक परिवार, मंडियरनी वाला तो बलविंदर, गोरा, गुरसांझ, कुलदीप ते इन्हां दा परिवार, कनेरा मोहला पटेला तो मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश, पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष, बिमला, इंदू, पार्वती, हिमांशु ते परिवार, गुरतेग बहादुर मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब तो मुहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, शमा, हिना, शकीला, जसमीन, राजिया, जावेद, पिंड बांडीवाला फाजिलका तो संत राम चावरिया, अंकुश, कुसुम ते पूनम, राकेश, नरेश, जगदीश, अंग्रेज़, भट्टी, सेवक सिंह, जनवाला, चढ़त सिंह तो पटियाली रोड, गंज, डंडवारा, उत्तर प्रदेश टाइम, खलील कुरैशी, नुसरत, एजाद, बेबी अरीबा, हबीबा, पिंड चनचेड़ी, तहसील खरड़, जिला एस एस नगर तो लियाकत, निशा, शाहीन, यासमीन, अरमान ते इन्हां दा सारा परिवार, पिंड तेजा मोहरी अंबाला तो बंसी लाल संधू, पोतरा कबीर, जसबीर संधू, पोतरियाँ वरनीत पवनीत संधू ते सारा ही संधू परिवार, फाजिलका तो हरियाणा तो विनय मोहन, खारवन, मीनाक्षी, पलोमा, डॉक्टर ईशानी, करणवीर सिंह पाल ते पूरा पाल परिवार, सराबा नगर जलंधर तो मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन, कविता गौड़ ते इन्हां दा परिवार, पिंड नंगल खेड़ा फगवाड़ा तो बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीश ते राहुल, रिम्पी सिंह, पाल सिंह, सलीम खान, बेटी तनवीर, पिंड बहेड़ी, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब तो संध्या गीत आवाज़ है प्रकाश कौर दी।

ओंकार सिंह दी आवाज़ सुनी तुसीं इह गीत सुन रहे सी और अगले गीत की फरमाइश इस तरह कोटली कला तो यादविंदर सिंह सुखविंदर रविंदर मनजीत ते गुरजोत डिंपल अदिति पुनीत प्रवीन लालड़ू मोहाली तो पिंड बसोली नेड़ी लालड़ू मंडी तो साधु सिंह भट्टी आरव शकीला कुलवंत तीनू ते इन्हां दा परिवार पिंड चगूड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव प्रवीन युगम वीरेन ते मनराज गुरजीत मलकीत गुरतेज ते परिवार हुशियारपुर तो पिंड ढाणी नत्था सिंह जलालाबाद पछमी तो रेशम सवना संदीप रमनदीप सोमा संजना किरना निशा कीरत इंद्रगढ़ संगरिया तो सरोज पीनू नितिन रजनीश आरती लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो सुखा सिंह सिद्धू अभी सतिंदर सिद्धू नवनीत खुशी ते सारा ही सिद्धू परिवार पिंड कंदवाला हाजर खान जिला फाजिलका तो इसे गीत की साढ़े को फरमाइश है इन्हें दर्शन सिंह अवतार जिला लुधियाना तो संतोष पाकरे सुनैना सुकन्या सविता नांदेड़ महाराष्ट्र तो मल्टन कनाल तो सुधीर नूतन संदीप गुगलानी चकवान प्रजापति प्रतिभा शर्मा इशप्रीत मलोट तो कुलवंत रमन ते परिवार परमवीर हाउस आदर्श नगर भिंडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर प्रवीण विक्रमजीत अनमोल ते पवनीत ब्रैम्पटन कनाडा तो निखिल नमीति नीति ते मेरीन भाटिया रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला शोभा नायक जेएस नायक पूरा डागला परिवार सनी बॉबी सोनू बिट्टू कचूरा पिंड घूरी जलालाबाद तो किला रहमतगढ़ मलेरकोटला तो मोहम्मद इकबाल कुकू मोहम्मद शमील छांगा निसार ते जग्गा राम परमजीत पूरबा ककड़वाल तो इन्हां दे नाल ने करमजीत पमाल मिंटू अमरीक जलान रमन ते प्रिंस सुंदर सब दी फरमाइश ते गीत आवाज़ है जसविंदर नरूला दे।

अगले गीत की फरमाइश शेष रहे हीरामणि वर्मा पारस पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा छत्तीसगढ़ तो। हरजिंदर सिंह बराड़ मेला सिंह सिद्धू पिंड डाकखाना बठिंडा तो। सुरेंद्र संधु अनीता रितेश प्रतीक्षा संधु ते मैक्स हरगोबिंद नगर नवां शहर तो। कोटली कला तो यादविंदर सिंह सुखविंदर रविंदर मनजीत ते गुरजोत। इसी गीत की फरमाइश है पिंड माधोबार मुक्तसर साहब तो भुपिंदर सिंह शिवराज करणबीर सिंह ते परिवार। आओ सुनते हैं सभी फरमाइश से गीत। आवाज़ है जीत खान होरां दी।

0: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास

और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। सातवीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: जय हिंद।
1: प्रतिभा दे वणजारे बच्चे, सूरज चंद सितारे बच्चे। और वाकई जी सूरज चंद सितारे बच्चे ने, और इन्हां चंद सितारियां दे लई, प्यारियां प्यारियां दे लई बाल जगत प्रोग्राम आउंदा है जी हर ऐतवार दी दोपहर नूं, और इन्हां दियां हाजरियां लगवाउण नूं, इन्हां दे नाल बातां पाउण नूं। और लो जी तुहाडे रेडियो सैट उपर हाजिर हो चुके ने सुखदीप और गुरप्रीत, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम बाल जगत लै के।
0: जी बिल्कुल, जिथे सुखदीप जी एक पासे कह रहे ने प्रतिभा दे वणजारे बच्चे, सूरज चंद सितारे बच्चे, तो ही कहना बनता है कि कुदरत कहंदी हो नहीं सकते एक आदत दे सारे बच्चे।
1: बिल्कुल जी, एक आदत दे बच्चे सारे नहीं हो सकते, पर देखो जी बच्चे जेड़े सारे ही ने ना, इन्हां च खूब सारी प्रतिभा है। और देखो पहलां ते प्यारे बच्चे, खूब सारियां ताड़ियां वजाओ अपने लिए जिन्हां ने दसवीं बोर्ड दी विचों चंगे नंबर लए ने। और खास करके गुरप्रीत, पता की होया इस वारी बड़ियां मल्लां मारियां ने पिंडां वालिया ने। और देखो जी अक्सर करके पिंडां वाले अपने आप नूं फखर नाल कहिंदे ने कि असीं पिंडां वाले हाँ, और शहरां वाले कई वारी कहिंदे ने कि जी देखो असीं शहर च रहिंदे हाँ, असीं ज़्यादा वधिया स्कूल च रहिंदे हाँ। पर जिहड़े ये पिंडां वाले बच्चे ने ना, इन्हां ने इस वारी बोर्ड के पेपरां दे विच झंडे गड़ ले ने, और जिहदे लई इन्हां दे माता पिता, इन्हां दे स्कूल दे अध्यापक ते ये खुद बहुत बहुत बधाई दे पात्र ने।
0: जी बिल्कुल, और जदों असीं बच्चों गल करदे आ ना, किसी भी चीज़ दे विच जदों तुसीं कोई जित हासिल करनी हुंदी है, खुशी अपनी झोली दे विच पाउणी हुंदी है, कोई भी कारगुजारियां करनियां हुंदियां ने, ते सब तों जरूरी चीज़ है तुहाडा चौगिरदा, तुहाडा आला दुआला, तुहाडे घर दा माहौल, तुहाडा स्टडी दा माहौल, और किस तरीके दे नाल तुसीं अपने दिमाग नूं लैके चलदे हो, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा जिहड़ा है उह शैतान हुंदा है, नौटी हुंदा है। हल्का जिहा तुहाडा डाइवर्जन हो गया ध्यान दा इधरों उधर, ते तुहाडे दो दो तीन तीन घंटे दी स्टडी खराब हो जाती है। जेकर उही कंसंट्रेशन तुहाडी बनी रहिंदी है, ते तुसीं एक वारी बैठिया ही तीन चार हैवी वाले टॉपिक्स चंगे तरीके दे नाल रिवाइज कर सकदे हो।
1: सो प्यारे बच्चे, हुण तुसीं नवीं क्लास, वड्डी क्लास दे विच जाण वाले हो, उहदे लई असीं तुहानूं बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहिंदे आ, और अच्छे तरीके दे नाल पढ़दे रहो, कामयाबी दे नवीं मंजिलां नूं सर करदे रहो। और प्यारे बच्चे, मौसम है गर्मी दा, और गर्मी जिहड़ी है ना उह सारिआं दे लई औखी है, जिहड़े बूटे ने उन्हां नूं भी तंग करदी है, जिहड़े पशु पंछी ने उन्हां नूं भी तंग करदी है, और प्यारे बच्चियां नूं ते गुरप्रीत बहुत ही कई वारी तंग करदी जदों स्कूलों आउंदे ने ना, ते फिर उन्हां नूं लगदा हुंदा वी जल्दी जल्दी एसी या कूलर दे थले जाके बह जाइए।
0: इस दे नाल नाल जदों असीं गल करदे हां एसी और कूलर दी, ते उन्हां नूं हुंदा है कुछ ना कुछ ठंडा सानूं मिल जाए पीण दे लई, जो कि असीं देखदे हां कि साडे बॉडी दे टैंपरेचर नूं इकदम हेठां लै आउंदा है, जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा तपश तुहानूं बाहरों मिली हुई हुंदी है, उहनूं जदों तुसीं ठंडा पानी, ठंडी कोई भी ड्रिंक पी के, या फिर एसी चले जाके अपनी बॉडी का सारा ही तालमेल जड़ा है।

0: और वाकई जी परमात्मा अगे प्रार्थना करते रहो और अपना कर्म भी जरूर करते रहो ता जो जिंदगी दे विच तुहानू कामयाबी मिले, शांति मिले, तरक्की मिले और प्यारे बच्चों का मनपसंद वाला प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत। और सुखदीप और गुरप्रीत ने तुहाडे नाल प्यारे बच्चे और हुण पता केदा वेला है गुरप्रीत जी?
1: जी बिल्कुल, जदों असीं गल करदे हां वारियां दी ते वारी जिहड़ी है गल्लां बातां हो गईयां ने नाल दी नाल मनोरंजन दी दुनिया दे वल वी तुहानू लै के जा चुके हां। सो नन्नी कलम दी वारी है जी, नन्नी कलम तों दे सिलसिले दे जरिए वख वख तरह दीआं परफॉर्मेंसिस सारे ही बच्चे रिकॉर्ड करके सानू भेजदे ने। सो आगाज़ करदे हां जी नन्नी कलम दा इस खूबसूरत जी परफॉर्मेंस दे नाल जिहड़ी के ब्यास तों खास करके बच्चों ने रिकॉर्ड करके भेजी है ग्रुप आइटम, आओ सारे रल मिल के सुनदे हां।
2: मैं शगुन, दिवजोत, नवप्रीत, अमृता, अज असी तुहाडे सामने एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्रस्तुत करन जा रहे हां।

0: मेरा सोने पीरन भुख लगी हुई है, दूध लेना। बोलना दूध लेना ते। समझी तेरी अफला तूनी नू।
1: मम्मी बाबू नू दूध
2: बेटे जे हुण ते मैनू दुध पिया के हटियां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: ये शीला अद्धी टैंकी तू पानी दिलाती अलग दा तो तपतीला।
1: अरे कहाँ बीबी जी, गाड़ी रोज धुलाते हो, बेरा साफ कराते हो और पानी बेचते शीला के नाम लगाते हो। आ चुको अपना पतीला, कल से नहीं आती शीला।
0: नी गल तो सुन।
1: मैं कोई गल गुल नहीं सुननी हैगी। पानी बचाना चाहिदा, पानी बचाओ, पानी बेचते शीला के नाम मत लगाओ।
2: पानी दी करो वरतों, ना करो दुर्वरतों।
3: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो। असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। असी तुहानूं दस्सीए कि तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते।

0: ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में संयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोज़ा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा

0: आला मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीरे आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज़्ज़त माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वज़ीर आज़म मोदी के इस दौरे से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतीजे से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: वज़ीर आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उज़राए आज़म ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, ख़ासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनू जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: जनाब अमित शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज़रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज़ पर हमले के चंद रोज़ बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैन अल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-11700 के ज़रिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप

0: नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीरे आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिए के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80 रुपये 9 पैसे की होगी, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88 रुपये 70 पैसे होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोह पैमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोह पैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से। फौजी वीरो एक बार फिर आप सब का स्वागत है। आप सुनते हैं आशा भोसले के साथियों फिल्म है पूनम की रात।

आशा भोसले तेरे साथियों का इस फिल्म पूनम की रात का गीत सुन रहे हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ विच, फिल्म है चलती का नाम गाड़ी।

0: सुन रहे हो लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थे और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी हुणे तुसीं इस फिल्म दा गीत सुन रहे सी किशोर कुमार ते अनूप कुमार दी आवाज़ विच। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत, गायक कलाकार मन्ना डे, लता मंगेशकर, फिल्म है सती सावित्री।

0: सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
1: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5

0: राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़

0: रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम

0: ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
4: ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ?
3: ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਨਾ।
5: ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਕਰੋ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਿੰਨ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ OTP ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲੋਕੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।
6: ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਮਤੇ ਜੋ ਕੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨਾਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੰਮੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਇਸ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਵਿਲਕਦੇ ਨਿੱਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੱਖਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ, ਅਗੰਮੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਆਈ। ਵੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆਈ, ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਜਦ ਨਨਕਾਣ।

0: प्रसंग श्री गुरु नानक देव जी। कुलदीप सिंह बलोकी कविश्वर ते साथियां दी गाई हुई एक कविश्री तो सुन रहे सी। ए सी प्रोग्राम रंगली धरती आकाशवाणी का, यह है जलंधर केंद्र। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट से। 3 बजे ने साड़ी ये सभा समाप्त होंदी है। अगली सभा नाल जुड़ेंगे 4 बजे। तद तक लिए आज्ञा दियो। धन्यवाद।
1: DTH Dear पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। इस वक्त 3:07 हो चुके ने, तो समा हो रहा है न्यूज़ हेडलाइंस का।

ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਲੀਨਾ ਸਵਿਤਲਾਨਾ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦਾ। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे पूनम सेठी तुहाडे सारयां दा दिल दी गहराई तो निघा स्वागत करदी हां। प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां। हाँ जी दोस्तों, इस प्रोग्राम विच की होवेगा, इस प्रोग्राम विच मैं तुहाडियां प्यारियां प्यारियां चिट्ठियां पढ़ांगी ते तुहाडे प्यारे प्यारे गीतां दी जिहड़ी फरमाइश है उसनू जरूर पूरा करांगी। वैसे किन्ना चंगा लगदा है ना सानू आकाशवाणी जलंधर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिदे राही असी अपने स्रोतियां दे नाल रेगुलर गल्लां कर सकते हैं। साडे जिहड़े स्रोते ने ओह वी सानू चिट्ठियां लिख के अपने दिल दीआं गल्लां जाहिर कर सकते ने ते असी उहनां दीआं गीतां दी फरमाइशां वी पूरियां करदे ने। एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जो कि आकाशवाणी जलंधर दे राही असी अपने स्रोतियां दे नाल निभा रहे हाँ, सानू बहुत ही वधिया लगता है। ते हुण आपां प्रोग्राम नू अगे वधाउने हाँ ते तुहाडियां चिट्ठियां नू इक इक करके पढ़दे हाँ। चिट्ठी आई है मॉडल टाउन करनाल तो, भेजण वाले ने सुधीर रतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, मीनाक्षी तिवाड़ी, ईशप्रीत शर्मा, बिपाशा शर्मा। इन्हां तों इलावा जिन्हां ने सानू चिट्ठी लिखी है ओह चिट्ठी आई है जमशेदपुर तो, हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया ते पप्पी पाटिया वालों। फिर सानू चिट्ठी लिखी है हरदीप सिंह, जगवीर सिंह ते ज्वाला सिंह ते डॉक्टर धर्मवीर लोडर ने। इन्हां तों इलावा सानू चिट्ठी लिखी है मॉडल टाउन करनाल तो, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, नरिंदर तनेजा, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, किरण ठाकुर ते प्रतिभा शर्मा ने। इन्हां तों इलावा सानू चिट्ठी जिन्हां ने भेजी है ओ आई है मोहम्मदपुर सौतर तो, टानी रतिया तो, जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, कौशल्या रानी, गुरछिंदर बूक, बब्बू बूक, कुलदीप बूक ते कीरत बूक वालों। ते नाल ही इन्हां दे कुछ होर सज्जन मित्र ने जिवें कि भूषण खेड़ा, जशन बूक ते बूक परिवार। ते इन्हां ने जिस गायक दी गीत नूं सुनन दी इच्छा रखी है वह है हरभजन मान। हुणे थोड़ी ही देर च आपां तुहानूं गीत सुनावांगे हरभजन मान दी आवाज़ विच, यारा मेरे यारा। आओ इस गीत दा आनंद मान।

हाँ जी दोस्तों, ये प्रोग्राम चल रहा है चिठियां मिठियां, ते मैं आरजी पूनम सेठी थोड़े नाल इस वक्त जुड़ी हुई हाँ। बहुत ही प्यारा गीत सी यारा मेरे यारा, ते ए सी साडे हरभजन मान जिन्हां दी आवाज़ बहुत ही दिल नूं लग जांदी है। हुणे आपां गीत सुन रहे सी हरभजन मान दी आवाज़ विच, ते थोड़ा जिहा उन्हां दे बारे तुहाड़े नाल गल्लां शेयर कर लैंदे हां। हरभजन मान नूं बठिंडा दे पिंड खेमुआना विखे जम्मे मान ने पंजाबी सभ्याचार नूं प्रफुल्लित करन विच अहम योगदान पाया है। उन्हां दी सुपरहिट फिल्म जी आया नू ने डुबदे पंजाब बी सिनेमा नू मुड़ सुरजीत कीता सी। हरभजन मान ने अपने छोटे भरा गुरसेवक मान नाल मिल के बचपन तो ही कवि श्री गाउणी शुरू कीती सी, ते कुछ उन्हां दे मशहूर गीत भी ने जिवें कि चिठिए नी चिठिए, जग जींदुआं दे मेले, मिर्जा ते दिल मेरा। कुछ मुख फिल्मां भी ने जिवें कि जी आया नू, आसा नू मान वतना दा, मिट्टी वाजा मार दी, जग जींदुआं दे मेले ते हीर रांझा। ये सी साडे प्यारे हरभजन मान। ते हुण आपां प्रोग्राम नू अगे वधाउने आ। चिट्ठी आई है गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी वल्लों। ये नछत्तर गिल दी आवाज़ विच कोई भी पंजाबी गीत सुनना चाहुंदे ने। असीं तुहाडे वास्ते एक बहुत ही प्यारा जिहा गीत लभ लिया है, ते थोड़ी जी

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं दस दाँ कि प्रोग्राम चल रहा है चिठियाँ मिठियाँ। मैं आरजे पूनम सेठी थोड़े नाल जुड़ी हुई हाँ। हुणे आपां दीदार संधू की आवाज़ में गीत सुन रहे सी ना मार जालमा वे, तो इन्हां दे बारे थोड़ियां जिहियां गल्लां भी कर लैंदे आ। दीदार संधू अपनी बेमिसाल कलम ते दिलकश आवाज़ लई पंजाब दी आवाज़ वजों जाने जांदे ने। 3 जुलाई 1942 नूं सरगोधा ज़िला के पिंड चक तहसील सिलावली विच होया, जो हुण पाकिस्तान विच है। उन्हां दे पिता सरदार समंद सिंह ते माता सरदारनी दान कौर सन। वंड तो बाद उन्हां दा परिवार पंजाब भारत आ गया ते बाद विच लुधियाना ज़िला दे पिंड पड़ौल खुरद विच आ वसिया। 1966 विच उन्हां दा विआह बीबी अमरजीत कौर नाल होया। उन्हां नूं बचपन तो ही कवितावां लिखण दा शौक सी ते उन्हां दे गीत सब तो पहलां नरिंदर बीबा ते मुहम्मद सदीक जी ने गाए। उन्होंने सुरिंदर कौर नरिंदर बीबा ते अमर नूरी वर्गे नामवर कलाकारा नाल मशहूर गीत दो गाना गाए। उन्होंने सदाबहार गीतों विच फाटक कोट कपूरे दा मेरी झांजर छनके ते ना मर जालमा वर्गे गीत अज भी लोगों की जुबान ते हन। ओ अपने पिंड पड़ौल खुरद जिला लुधियाना दे लगभग 15 साल तक सरपंच भी रहे। दीदार संधू का देहांत 16 फरवरी 1991 नूं 43 साल की छोटी उम्र विच हो गया सी। उन्हां दे सुपुत्तर जगमोहन संधू भी एक गायक सन। ए सी साडे प्यारे दीदार संधू। तो हुण आपां कुछ होर भी चिट्ठियां पढ़ लैंदे आ। चिट्ठी आई है मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुकसर पिंड मोहल्ला तो पॉल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहल्ला तो ते दर्शन बराड़ मुलकीत कुड़ियाना। इन्हां तों इलावा आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा वालों चिट्ठी आई है। फिर चिट्ठी आई है गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक ते मीका बिरक। हुण आप अगला गीत सुनन जा रहे हैं अमर नूरी दी आवाज़ विच, सोने नैना वाले दे जा करेले। आओ सुनते हैं गीत।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां। ते मैं आरजे पूनम सिटी इस वक्त थोड़े नाल जुड़ी हुई हाँ। जिहड़े स्रोते साडे नाल हुणे हुणे जुड़े ने, मैं उन्हां दा वी दिल दी गहराई तों निघा स्वागत करदी हाँ। इस वक्त आपां हुणे गीत सुन रहे सी अमर नूरी दी आवाज़ विच, सोने नैना वाले दे जा करेले। बहुत ही प्यारी आवाज़ है उन्हां दी। ते हुण आपां थोड़ी जी गल्लां करांगे उन्हां दे बारे। उन्हां दा जन्म 23 मई 1967 नूं पिंड रंगीलपुर, ज़िला रूपनगर, पंजाब विखे होया। छोटी उम्र तो ही गायकी शुरू करन वाली अमर नूरी ने मरहूम महान गायक सरदूल सिकंदर नाल ब्याह करवाया सी। मुढ़ला जीवन दे बारे गल की जाए तो अमर नूरी ने अपने संगीतक सफर की शुरुआत सिर्फ 13 साल की उम्र विच कीती सी। उन्होंने पंजाबी गायक दीदार संधु नाल स्टेजा ते गाना शुरू किया ते बहुत छोटी उम्र विच ही अपना पहला रिकॉर्ड कढ लिया सी। उन्हां दी आवाज़ पंजाबी लोक गीतां, दो गाणियां ते भंगड़ा ट्रैकां लई बहुत मशहूर है। फिल्मी सफर की गल की जाए तो गायकी के नाल नाल अमर नूरी ने कई पंजाबी फिल्मों विच भी काम किया। उन्होंने साल 1991 विच आई सुपरहिट फिल्म बदला जट्टी दा नाल अपनी अदाकारी की शुरुआत की सी। उन्हां दा

आई है। पनवाल हाजीपुर तो चौंकरी चौकरी गोकुल दास रजनीश कौंडल ते आरके कौंडल वालों इन्हां ने हाकम सूफी की आवाज़ विच गीत सुनने की इच्छा रखी है। उड़ीकां गीत सुनना चाहते हैं। असं ये गीत तुहानू थोड़ी ही देर च जरूर सुनावांगे। इस तों अलावा पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो चिट्ठी लिखी है कमलदीप सोहन मोहन सिंह दीपा सेठ गैवी ते एकम ने। इन्हां तों अलावा चिट्ठी लिखी है खाणे दी ढाब मलोड़ तो शमशेर सिंह कौलधर जसविंदर कौर करण प्रताप सिंह मनरीत कौर ते तरनवीर सिंह ने। फिर चिट्ठी आई है मुक्तसर तो बब्बू सिंह तीमन बलजिंदर कौर तीमन रवनीत निशु ते भुपिंदर ने सानू चिट्ठी लिखी है। ते आओ आपां प्रोग्राम नू अगे वधाउने आं उडीकां गीत सुनदे आं हाकम सूफी दे।

हाँ जी दोस्तों, हुन समय ने सानू बंद दिता है। समय इजाजत नहीं दे रहा कि असी प्रोग्राम नू होर अगे वधाइए। मेरे वल्लों यानी कि आरजे पूनम सेठी वल्लों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल ते नमस्कार। आपां तुहानू जरूर मिलांगे अगले किसी होर रविवार नू। तद तक अपना बहुत ख्याल रखना, अपने परिवार का भी ख्याल रखना ते हमेशा चढ़दी कला विच रहना। नमस्कार, सत श्री अकाल।

0: इतना अदबी रिसाला हम कलम के सभी समाइन का हम खैर मकदम करते हैं। उर्दू अदब में तनकीद का अहम मकाम है, जो अदब की कमियों को उजागर करने के साथ साथ उनकी खूबसूरती मानी अफरीनी और समाजी पस मंजर को समझने का भी अमल है। तनकीद अदब को सही समत देती है और अदब नवीस को अपनी इजहार की सलाहियत को निखारने में भी मदद करती है। आइए इसी सिलसिले में सुनते हैं डॉक्टर इराक रजा जैदी की तकरीर। उनवान है, पंजाब में उर्दू तनकीद का इर्तिका।
1: पंजाब में उर्दू तनकीद का इर्तिका। उर्दू जबान के इर्तिका के चंद नज़रियात में से एक नज़रिया उर्दू पंजाबी से निकली है को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब से उर्दू का रिश्ता बहुत पुराना है, इसीलिए मरसिए को छोड़कर हर सिन्फ़ अदब में पंजाब का कोई ना कोई अदीब या शायर सिन्फ़ अव्वल में ज़रूर शुमार किया जाता है।

ही रोशनी नहीं है क्या? कफस कफस है चांदनी ही चांदनी नहीं है क्या? धनक धनक है रोशनी ही रोशनी नहीं है क्या? बहार बेबहार सी खजां बुझी उदास सी, बहार बेबहार सी खजां बुझी उदास सी, पुकारती पुकारती सी खामोशी नहीं है क्या? बहार बेबहार सी खजां बुझी उदास सी, पुकारती पुकारती सी खामोशी नहीं है क्या? कहाँ कहाँ है मंजिलें, कहाँ कहाँ है रास्ते, कहाँ कहाँ है मंजिलें, कहाँ कहाँ है रास्ते, ये आढ़ी तिरछी जिंदगी कमान सी नहीं है क्या? कहाँ कहाँ है मंजिलें, कहाँ कहाँ है रास्ते, ये आढ़ी तिरछी जिंदगी कमान सी नहीं है क्या? सवाल का जवाब भी जवाब का सवाल भी, सवाल का जवाब भी जवाब का सवाल भी, अजीब सा सवाल है ये आदमी नहीं है क्या? अजल से हाल तक फलक बिखर बिखर गया है सब, अजल से हाल तक फलक बिखर बिखर गया है सब, ये जिंदगी निखारती संवारती नहीं है क्या? अजल से हाल तक फलक बिखर बिखर गया है सब, ये जिंदगी निखारती संवारती नहीं है क्या? कफस कफस है चांदनी ही चांदनी नहीं है क्या? धनक धनक है रोशनी ही रोशनी नहीं है क्या? सामईन, साले नौ की आमद आमद है, और इस मौका पर एक नज़्म बानवान नया साल पेश खिदमत है। नया साल आया, नया साल आया, पहेली नई साथ लाया, नया साल आया, पहेली नई साथ लाया, हमेशा गए साल ही की तरह हल करूं या नई कोई तरकीब ढूंढूं। नया साल आया, पहेली नई साथ लाया, हमेशा गए साल ही की तरह हल करूं या नई कोई तरकीब ढूंढूं। दिसंबर करेगा बयां, दिसंबर करेगा बयां, ये गिरह कुछ खुली के नहीं, दिसंबर करेगा बयां, ये गिरह कुछ खुली के नहीं, जब मेरा ध्यान होगा नई एक पहेली की जानिब। सामईन, अब आखिर में एक दुआया गज़ल पढ़कर साले नौ को खैर मकदम कहते हैं। मुझको एक कहानी दे, मुझको एक कहानी दे, परियों की कोई रानी दे, मुझको एक कहानी दे, परियों की कोई रानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, सूरज आग को पानी दे, चांद को वो तुगयानी दे, सूरज आग को पानी दे, तेरे जैसा दिखता हो, तेरे जैसा दिखता हो, मुझको अपना सानी दे, तेरे जैसा दिखता हो, मुझको अपना सानी दे, सोच की बूढ़ी नस्लों को, सोच की बूढ़ी नस्लों को, बच्चों सी शैतानी दे, सोच की बूढ़ी नस्लों को, बच्चों सी शैतानी दे, दाना बढ़ते जाते हैं, दाना बढ़ते जाते हैं, इनको कुछ नादानी दे, दाना बढ़ते जाते हैं, इनको कुछ नादानी दे, लंगर हिलना भूल गए, लंगर हिलना भूल गए, झोंका एक तूफानी दे, लंगर हिलना भूल गए, झोंका एक तूफानी दे, छत पर चांद अकेला है, छत पर चांद अकेला है, बच्चे को एक नानी दे, छत पर चांद अकेला है,

0: बच्चे को एक नानी दे, झील किनारे एक कमल, झील किनारे एक कमल, इल्म का कोई दानी दे, झील किनारे एक कमल, इल्म का कोई दानी दे, खामोशी के गुंबद को, खामोशी के गुंबद को एक सदा लाफानी दे, खामोशी के गुंबद को एक सदा लाफानी दे, खंजर बढ़ते आते हैं, खंजर बढ़ते आते हैं, इनको एक मयानी दे, खंजर बढ़ते आते हैं, इनको एक मयानी दे, तेरे बंदे भूखे हैं, तेरे बंदे भूखे हैं, इनको रोटी पानी दे, तेरे बंदे भूखे हैं, इनको रोटी पानी दे, भटकी रूहों को दाता, भटकी रूहों को दाता, दुनिया आनी जानी दे, भटकी रूहों को दाता, दुनिया आनी जानी दे, मेरी गज़लों को मौला, मेरी गज़लों को मौला, थोड़ी चुस्त बयानी दे, मेरी गज़लों को मौला, थोड़ी चुस्त बयानी दे, तेरा नौकर दास फ़कीर, मखता है, तेरा नौकर दास फ़कीर, खुल्लर को सुल्तानी दे, तेरा नौकर दास फ़कीर, खुल्लर को सुल्तानी दे, मुझको एक कहानी दे, परियों की कोई रानी दे, चांद को वो तुग्यानी दे, सूरज आग को पानी दे, तेरे बंदे भूखे हैं, इनको रोटी पानी दे, सोच की बूढ़ी नस्लों को बच्चों सी शैतानी दे, छत पर चांद अकेला है, बच्चे को एक नानी दे।
1: स्माइल प्रोग्राम हम कलम समात फरमा रहे थे। अब प्रोग्राम के आखिर में पेश एक खिदमत है, एक अफसाना जिसका उन्वान है तब्दीले। अफसाना निगार है मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी।
2: पानी का पाइप खुला था और पूरी सड़क को सैराब कर रहा था। भीगी हुई गाड़ी देखकर मालूम होता था कि कोई पाइप खुला छोड़कर अंदर चला गया है। मास्टर दीपक कुमार ये देखकर रुक गए और गाड़ी के मालिक का इंतज़ार करने लगे। घर के अंदर से प्रॉपर्टी डीलर सिंगला बड़े आराम से चलता हुआ बाहर आया, दाएं हाथ से पाइप उठाकर गाड़ी धोने लगा। दीपक कुमार उसे देखते रहे मगर सिंगला ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। आखिर मास्टर दीपक बोल उठे, सिंगला साहब, आप गाड़ी धो रहे हैं या गली में सैलाब लाने के मूड में हैं? गाड़ी तो दो तीन बाल्टियों से भी धोई जा सकती है, आप इतना पानी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सिंगला खामोशी से बाईं हाथ में पकड़ा फोम गाड़ी पर फेरता रहा। थोड़ी देर बाद मास्टर दीपक ने फिर सवाल किया, सिंगला साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सिंगला मुंहफट आदमी थे, थोड़ा गुस्सा से बोले, मेरे यहाँ समस्तीवाल लगा हुआ है जो बिजली से चलता है और बिजली का बिल मैं अपनी जेब से देता हूँ, आप बताएं आपको क्या तकलीफ है? मास्टर दीपक ने हंसकर कहा, बिजली का बिल बेशक आप देते हैं, आपका घर है, मगर पानी पर हम सब का हक है। भाई साहब, पानी की इंपॉर्टेंस समझिए, आज हमारे कई प्रदेश सूखे की लपेट में आ चुके हैं, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, ये पानी अमृत है, हम हैं तो इसकी वजह से, भगवान ना करे कि पंजाब की हालत लातूर जैसी बने, इसलिए जितना हो सके पानी बचाइए और अपने आप पर तरस खाइए। सिंगला उखड़ कर बोला, बढ़ाया पंजाब का ठेकेदार, चल चल अपना रास्ता नाप, ये भाषण स्कूल के बच्चों को जाकर देना। मास्टर दीपक फिर हंसा और बोला, आप तो बुरा मान गए, जब हम बड़े पानी का इस

इस्तेमाल सीखेंगे तभी छोटे बच्चों को मालूम होगा ना। सिंगला हाथ रोककर बोला, ओ मास्टर जी, तू मास्टर है, मास्टर बन के रह, नेता ना बन, चल फुट यहां से वरना। मास्टर दीपक वरना का मतलब समझ गए। वैसे भी वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। गर्दन झटक कर मुस्कुराते हुए चल दिए। सिंगला उसी स्पीड से पहानी बहाता हुआ बुड़बड़ाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सिंगला का सारा दिन मूड खराब रहा। बीमार बीवी को लेकर अस्पताल गया तो उन्होंने ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। खून के सैंपल देकर वो रिपोर्टों के चक्करों में उलझ गया। कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर। दिन ढले तक उसने काम मुकम्मल कर लिया। आज डिनर उसने एक पार्टी के साथ होटल में लेना था। उसके लिए तैयार होते होते रात के 8 बज चुके थे। काम वाली बाई को जरूरी हिदायतें देकर सिंगला बिजनेस मीटिंग के लिए चला गया। पार्टी देर तक चली। वो थका मांदा आया और लड़खड़ाता हुआ अपने बेडरूम में जाकर बगैर कपड़े बदले एसी ऑन करके सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे। वो पसीने में भीग चुका था। मारे प्यास के उसकी जबान लकड़ी हुआ चाहती थी। उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। उसने आंखें खोली, घुप अंधेरा था। एसी बंद पड़ा था, छत का पंखा साकत था। उसने हाथ बढ़ाकर बेड के सरहाने पड़ी तपाई पर रखी बोतल उठाई। बोतल में पानी बहुत ही कम था। उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और बोतल मुंह में उंडेल ली। मुश्किल से एक घूंट पानी से वो अपना गला तर कर सका। खाली बोतल फेंक कर वो काम वाली बाई को दिल ही दिल में कोसने लगा। एक घूंट पानी ने प्यास और बढ़ा दी थी। सरहाने से मोबाइल उठाकर उसकी हल्की हल्की रोशनी के सहारे चलता हुआ वो इन्वर्टर के पास गया तो उसे याद आया कि 2 दिन पहले ही उसकी बीवी ने उसे इन्वर्टर खराब होने की इत्तला दी थी। उसे फुर्सत ही नहीं मिली कि उसे उठाकर मैकेनिक के पास ले जाता। चारों नाचार गले को सहलाता हुआ वह प्यास बुझाने की गरज से फ्रिज की तरफ लपका। उसे सख्त मायूसी हुई। बोतलें खाली थीं और बर्फ़ के डोंगे वो भी खाली। उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। मारे प्यास के उसका दम घुट रहा था। बिजली होती तो वो समस्तीबेल से पानी हासिल कर लेता। टैंकी के पानी का तसव्वुर करके उसे उबकाई आने लगी। बरसों से टैंकी की सफाई नहीं हुई थी, ना ही उसमें लाल दवाही डाली गई थी। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा वो सोच रहा था कि वो टैंकी का पानी पिए या ना पिए। उसका मुंह सूख रहा था। उसने जबान होठों पर फेरी। कुछ सोचकर मोबाइल फोन की रोशनी में बाथरूम का दरवाज़ा खोला और पानी की टूंटियाँ अपने होंठों में ले ली और गटागट पानी पीने लगा। जी भर कर पानी पीने के बाद वो बाथरूम से निकला और अपने बेड पर फिर से ढेर हो गया। ख्वाब में भी वो पानी की तलाश में भटकता रहा। सुबह को जब जागा तो उसका जिस्म टूट रहा था। उसके पेट में सख्त दर्द महसूस हो रहा था। प्यास की शिद्दत और टैंकी के पानी को पीने की बात याद करके वो कांप उठा। उसे आज बीवी को रिपोर्टों के साथ अस्पताल ले जाना था। ज़रूरियात से फारिग होकर उसने चाय पी, लेकिन दर्द उसके पेट में मुतवातर वैसे ही हो रहा था। गैराज से गाड़ी निकालकर बाहर खड़ी करके वो बाल्टी और मग लेकर गाड़ी धोने लगा। मास्टर दीपक अपने मुकर्ररा वक्त पर वहां से गर्दन झुकाए खामोशी से गुजरे तो सिंगला से रहा ना गया और मुस्कुराता हुआ ताजीम से बोला, मास्टर जी नमस्कार। मास्टर दीपक ने सिंगला की तरफ देखा जो मग से पानी गाड़ी पर फेंक कर दूसरे हाथ से उसको मसल रहे थे। नमस्ते सिंगला साहब, वो मुस्कुराकर जवाब में बोले। सिंगला उनको देखकर बोला, मास्टर जी वाकई पानी हमारे लिए अमृत ही है। हमें इसकी महत्वता

0: समझनी चाहिए। यह तब्दीली देखकर मास्टर दीपक हैरान हो रहे थे।
1: समाइन, अभी आपने जनाब मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी का अफसाना सुना जिसका उन्वान था तब्दीली। अब इसके साथ ही प्रोग्राम हम कलम अपने अंजाम पे पहुंचता है। अगले माह की मुलाकात के वायदे के साथ खुदा हाफिज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6।

नाम जपो मेरे साजन सहना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़ै पाग गुरमुख हर लेना। ए फरमान चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारित है। आप जी फरमाउंदे ने कि हे सज्जन मित्रो, उस प्रभु दा नाम जपो। उस प्रभु दे नाम तो बिना होर कोई ऐसा नहीं है जो सहाई हो सके। पर प्रभु दा नाम वड्या पागा नाल ही जपया जा सकता है। इस वास्ते अकाल पुरख दी पूरन दृष्टि दी लोड़ पासदी है। राग तनासरी विच साहिब श्री गुरु रामदास जी अपने मन नूं संबोधित हुंदे होए फरमाउंदे ने, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। सरवण करदे आं भाई चरणजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। आप जी सरवण कर रहे सो भाई चरणजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस दे ही पाई। होर भी फरमान है, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। ए फरमान भगत कबीर जी द्वारा उचारित है, जो प्रभु दी भगती नूं उत्तम साधन मनते हैं उस अकाल पुरख नाल अपेदता दे लई। आप जी अनुसार भगती तो बिना जीवन व्यर्थ है, किसी भी कम का नहीं है। सतपुरशां दी संगत विच जाके प्रभु दी उस्तत कीत्या, उस सच्चे दी आराधना कीत्या ही उस दे नाल मिलाप संभव है, वरना ऐसा नामुमकिन है, असंभव है। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दी बाणी विच प्रभु भगती दी, प्रेमा भगती दी, प्रभु दी भजन बंदगी दी महिमा बयान कीती गई है। सुनदे हां भुपिंदर कौर होरां पासों वार्ता, भगत बिन बिरथे जन्म गयो।
1: गुरबाणी विच प्रभु सिमरन करन वाले नूं भगत दी पदवी मिली है। सास गिरास मालक दाते नूं याद रखना, नाम सिमरन दे आहर विच रहना, गुरु तो बलिहारे जाना, बंदगीहीन मनुखां तो दूरी रखनी, भगत दे सहज चिन्ह हन। भगत कबीर जी गौड़ी राग दे एक शब्द विच बहुत सुंदर दृष्टांत दे के मन नूं समझाउंदे हन कि प्रभु जी दी भगती तो बिना मनुखा जन्म व्यर्थ ही जांदा है। भगत जी समझाउंदे हन कि जिवें बांदर कुजे च हथ पा के छोलियां दी मुठ भर लैंदा है ते लोभ वस हथ बाहर नहीं कढ़दा ते काबू

व्यर्थे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कही न सच रहो। भगत कबीर जी द्वारा उचारित इस रचना का गायन किया सी भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जा लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: आनी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: QR कोड नु स्कैन करो, 5000 दा कैशबैक पाओ। वाह, फायदा ही फायदा।
1: फसिया। UPI पिन दाखिल करो, सिर्फ पैसे भेजने लई।
2: RBI कहंदा है,
3: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन वेला हो रहा परिचय दा, यानी कि अज रात तक दे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दा। ते लो फिर इक झात पईए अज रात तक दे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय ते। साढ़े 6 बजे तुसी सुनोगे दिहाती प्रोग्राम, जिदे च काम दीआं गल्लां तों इलावा मुर्गियां दी देखभाल बारे डॉक्टर दलजीत कौर जानकारी देणगे, ते 90 साल आकाशवाणी दे नाल। इस तों इलावा गीत संगीत ते मौसम दी जानकारी दित्ती जाएगी। सत बज के 40 मिनट ते प्रोग्राम वगदे पानी तहत तुसी राजकुमार दा पंजाबी कविता पाठ सुनोगे। रात 8 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली।

दौरान उन्होंने कहा कि सहकार भारती एक बहुत पुरानी ते मजबूत संस्था है जो 1999 विच स्थापित की गई सी ते उस समय तो ही पिंडा ते आम लोगों की भलाई लिए निरंतर काम कर रही है। राजपाल ने कहा कि सहकारिता की भावना लोगों को आपसी भाईचारे सहयोग ते समर्पण नाल जोड़ती है। उन्होंने कहा कि संस्कार तो सहकार का सिद्धांत समाज को मजबूत बनाने विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने भी कहा कि सहकारिता खेतर का सब तो वड्डा योगदान खेतीबाड़ी ते डेयरी खेतर विच है। किसानों को खाद बीज ते होर सहूलतां प्रदान करन विच सहकारिता संस्थावां दी अहम भूमिका रही है। डेयरी खेतर विच भी सहकारिता ने पिंडां दे लोकां नूं आत्मनिर्भर बनाउण विच मदद कीती है। उन्होंने कहा कि जे सहकारिता नूं होर मजबूत कीता जावे तां पिंडां दी आर्थिकता नूं वड्डा फायदा हो सकदा है। पंजाबियों की शलाघा करदिआं राजपाल ने कहा कि पंजाब देश का अन्न भंडार है ते इत्थों दे किसानां ने देश की खाद सुरक्षा विच वड्डा योगदान पाया है। समागम विच वड्डी गिणती विच समाज सेवी नौजवान अते वख-वख खेतरां नाल जुड़े प्रमुख व्यक्ति हाजिर सन। पंजाब विच 8 नगर निगमां 76 नगर कौंसलां ते 21 नगर पंचायतां समेत 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं होणगीआं। बीते दिनी पंजाब राज चोण कमिशन वालों इन्होंने चोणों का ऐलान किया गया सी। चोणों लिए नामजदगी प्रक्रिया कल खत्म हो गई है। नामजदगी पत्रां की पड़ताल 18 मई में होगी जदों की नामजदगियां वापस लैण की आखिरी तरीक 19 मई है। कमिशन ने चोणों को निरपक्ष सुतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग नाल कराउण लई सूबे के 23 जिलों में आईएएस ते सीनियर पीसीएस अधिकारियों निगरान नियुक्त किया है। इस दौरान मोहाली के डिप्टी कमिश्नर कम जिला चोन अफसर श्रीमती कोमल मित्तल ने जानकारी दी कि राज चोन कमिश्न पंजाब वालों पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मों की पालना करद नगर कौंसल खरड़ दिया आम चोणा मुलतवी करन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने दसिया कि राज चोन कमिश्न पंजाब तो प्राप्त पत्र अनुसार नगर कौंसल खरड़ लई चल रही चोन प्रक्रिया जिस विच नामजदगी प्राप्त करन दी प्रक्रिया भी शामिल है नूं तुरंत प्रभाव नाल समाप्त कर दिता गया है। डिप्टी कमिश्नर ने अगे दसिया कि चोणां मुलतवी करन संबंधी जनतक नोटिस रिटर्निंग अफसर खरड़ अते नगर कौंसल खरड़ के दफ्तरां विच ला दिता गया है। श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि नगर कौंसल खरड़ दीआं चोणां करवाउण संबंधी अगली कार्रवाई स्थानक सरकारां विभाग पंजाब तो नवीं नोटिफिकेशन प्राप्त होण उपरंत की जाएगी। आज विश्व हाइपरटेंशन पाव ब्लड प्रेशर दिवस है। इसका उद्देश्य विश्वव्यापी जागरूकता रोकथाम खोज और हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में उत्साहित करना है। इस साल का विषय है हाइपरटेंशन रल के काबू करिए नियमित तौर पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करो और इस बीमारी को हराओ। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना हाइपरटेंशन इस जुड़िया बीमारियों जूझ रहे मरीजों सस्तियां समय सिर सेहत सेवावां मुहैया करवा के वड्डी राहत दे रही है। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन किया जाता है ये बिना किसी स्पष्ट चेतावनी दे स्ट्रोक दिल फेल होना या किडनी रोग वर्गियां गंभीर समस्यावां दा कारण बन सकता है। ये बीमारी करीब हर उम्र वर्ग विच देखी जा रही है। विश्व सेहत संगठन मुताबिक भारत विच हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी नाल वध रही है जिसके मुख्य कारण गलत खुराक तनाव तंबाकू का सेवन शरीरक गतिविधियों विच कमी अते अनियमित जीवन शैली ने। पंजाब च 30 साल तो वध उम्र के 1 करोड़ तो ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है अते 24 लाख लोग इलाज अधीन लियांदे गए ने। आईपीएल क्रिकेट विच अज धर्मशाला विच पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू नाल हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने पहला बल्लेबाजी करदिया पंजाब किंग्स सामने जीत लई 223 दौड़ा का टीचा रखा है। ताज़ा खबरां मिलण समय तक पंजाब किंग्स ने 10 ओवरां विच 5 विकटां दे नुकसान ते 93 दौड़ां बना लिया सन। एक होर मैच विच दिल्ली विच शामी 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होएगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने हुण एक दिन विच 256.4 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मंग नूं सफलता नाल पूरा कर लिया है। पंजाब विच भी झोने दी रुत दौरान बिजली की मंग ज्यादा होने का अनुमान। गुरदासपुर हैंड ग्रेनेड मामले के संबंध में 3 व्यक्ति गिरफ्तार। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने सहकार भारती पंजाब जागरूकता संगोष्ठी विच मुख मेहमान वजो शिरकत की। उन्होंने सहकारिता अंदोलन पिंडा के विकास से समाजिक मजबूती का अहम आधार करार दिता। ते पंजाब विच 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं पर खरड़ दीआं चोणां मुलतवी करन संबंधी निर्देश जारी। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हां जी, तेजा सिंह जी, जेड़ा सिलसिला अपना 90 साल आकाशवाणी दे नाल
4: जी,
3: इस सिलसिले दे विच जेड़े भी लोग आकाशवाणी दे नाल जुड़े हुंदे है किसी भी पक्ष तो
4: जी,
3: चाहे वह स्रोता वर्ग है, चाहे वह पेशकारी दे नाल जुड़िया, किसी ना किसी तरह आकाशवाणी नाल संबंध रखते हैं, तो वह लोग आके अपने दिल दीआं गल्लां जज्बात अपने सांझे करते हैं। अश्विनी कुमार होरी ने अज्ज दे सिलसिले च इन्हां नाल गल्लां बातां होईआं सांझीआं करदे आपां
4: जी। ठीक।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है। तुहानू जरूरत ते

0: तब एक बुलाया जाएगा।
1: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 7:42 हो चुके ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम वगदे पाणी। अज दे इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे राजकुमार दा पंजाबी कविता पाठ।
3: मेरी कविता का अनुवान है बसंत। आद जुगाद तो पा रहे रौला, आद जुगाद तो पा रहे रौला, बसंत रुत्ते कटी पतंग देख ते फिर मगर भजदै फड़न खातर, जे वह भी हाथ ना आई ता तमाशा करदे मदारी वांग खब्बे हाथ नू घुमा घुमा कट्ठी करदे डोर, तमाशा करदे मदारी वांग खब्बे हाथ नू घुमा घुमा कट्ठी करदे डोर, बड़ा तरस आउंदा तेरे ते क्यों तेरा बदन संवेदनहीन हो गया, अपना मुल ना पवा, अपना मुल ना पवा, जरा सोच बेमुल्ला ए तू, दिन महीने साल सदियां गुजर गईयां, दिन महीने साल सदियां गुजर गईयां, कुछ अपने पूर्वजां तो ही सिख, कुछ अपने पूर्वजां तो ही सिख, बीते दा विश्लेषण कर चक्करवात दे वहना चों बाहर निकल, लंघ जा खारे समुंदर गा दे तप दे मारूथल, बदल दे समाजिक समीकरण लिया अपने बेहड़े विच बसंत बहार, खिड़ा अपने आंगन विच रात दी राणी ते दुपहर खिड़ी, कटी पतंग वल ना भज, कटी पतंग वल ना भज, पतंग दा मालक बन ते हत्थी बना डोर, फिर लिखी जावेगी सही अर्थां विच बसंत दी इबारत, बसंत दी इबारत, बसंत दी इबारत। गज़ल दा मतला है हनेरा झूठ मुक जावे ना चामा दी बली होवे, हनेरा झूठ मुक जावे ना चामा दी बली होवे, जगाइए सच दे दीवे दिलां विच रोशनी होवे, उदासी रुत्त विच ओ खेड़ियां दी दात वंडदे ने, उदासी रुत्त विच ओ खेड़ियां दी दात वंडदे ने, थलां लई होंद है उस दी ज्यों बदली वरस दी होवे, तो शेर है कि नज़र आउंदे ने झड़दे फुल अते बलदे सिवे अक्सर, नज़र आउंदे ने झड़दे फुल अते बलदे सिवे अक्सर, कदे तां खाब विच साडे समुंदर जा नदी होवे, बड़े अरमान सन दिल विच मगर मैं ये भी चाहुंदा सां, बड़े अरमान सन दिल विच मगर मैं ये भी चाहुंदा सां, गली विच जा रहा होवां वो कोठे ते खड़ी होवे, ये जेड़े तुक रहे जज्बात ने साडे मना अंदर, ये जेड़े तुक रहे जज्बात ने साडे मना अंदर, इना नू दे हवा मौला चुफेरे रोशनी होवे, तो आखरी शेर है कि बुझाउना लोचदी है प्यास जो अथरे समुंदर दी, बुझाउना लोचदी है प्यास जो अथरे समुंदर दी, नदी ओ मचल दी जां सुलग दी जां तड़फ दी होवे, हनेरा झूठ मुक जावे ना चामा दी बली होवे, जगाइए सच दे दीवे दिलां विच रोशनी होवे, दिलां विच रोशनी होवे। गज़ल दा मतला है जी कि अलविदा मगरों मैं हुन दिल नू मनावां किस तरह, अलविदा मगरों मैं हुन दिल नू मनावां किस तरह, बेबफा दिलदार दे कर फेर जावां किस तरह, आप ही लिखिया सी अपना ना मेरी पुस्तक च तू, आप ही लिखिया सी अपना ना मेरी पुस्तक च तू, आप ही कहने मिटा दे मैं मिटावां किस तरह,

0: आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तुसी सुन रहे सी पंकज उदास दी गाई ए गज़ल। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां।
1: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: देखो पहाड़ां दे विच खास करके, है ना
1: तां ठीक है, बिल्कुल गल थोड़ी
0: जी।
1: ठीक है, जिन्हां ने तैयारी की जून दे महीने जाण दी।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: और देखो असीं गल कर रहे हाँ कि पेट्रोल जिहड़ा है बहुत महंगा हो चुका
1: जी
0: है,
1: जी बिल्कुल,
0: और इस नू सेव करना साड़ी अपनी जिम्मेवारी है।
1: साड़ी
0: और
1: सब दी जिम्मेवारी है,
0: जे
1: बिल्कुल
0: तुसी जा रहे हो तो थोड़ा जा रुक जाओ, और जां फिर जाना बहुत ही जरूरी है तो फिर परिवार इकट्ठे होके चले जाओ।
1: इकट्ठे होकर जाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिथे हो सके
0: हाँ
1: वध तो वध इस्तेमाल करना चाहिए है।
0: जी
1: तुसीं देखो एक बस जाती है भर के 40-50 सवारियां लैके जाएगी, तुसीं जाओगे तो एक गड्डी विच जाओगे,
0: चार
1: तीन
0: जाने
1: चार चार
0: जाओगे
1: जने जाओगे।
0: जी। सो जी इस करके सानू जरूर इस वाल ख्याल करना चाहिए। और चिट्ठियां का सिलसिला शुरू करिए जी।
1: जी
0: देखो ये मेरे को ईमेल आई है जी, लिखन वाले ने अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, सारा समूह वर्मा परिवार, बस अड्डा पिंड बुरज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका तो।
1: जी की लिख देने।
0: सब तो पहला तो आकाशवाणी जलंधर के 90 साल पूरे होने ते समूह आकाशवाणी जलंधर स्टाफ नू ते समूह श्रोतियां नू बहुत बहुत मुबारकां।
1: साडे वल्लों भी जी आप सब नू 90 साल आकाशवाणी दे पूरे होण ते बहुत बहुत मुबारकां। आकाशवाणी ने 90 साल बड़े ही गौरवमई तरीके दे नाल लोक सेवा दे विच प्रसारण दे विच पूरे कीते ने, बहुत बहुत मुबारकां तुहानू भी।
0: अगे लिख रहे हैं जी, कहंदे के वसदे बड़े प्रोग्राम दे तहत मेरी कलम दे तहत अरविंदर कौर जी दी बहुत ही वधिया कहानी मैं छुट्टी ते जा रही हां सुनी, बहुत आनंद आया। सांझ प्रोग्राम विच एडवोकेट मोहित जस्सी जी कानूनी हक्कां बारे बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दित्ती, कहंदे बहुत ही वधिया इन्फॉर्मेशन सी
1: देखो
0: तुहाडा
1: बस वसदे वेड़े
0: जी
1: प्रोग्राम दे विच दोनों सिलसिले जिहड़े पेश कीते गए इन्हां नूं पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: जी ते अगे भी इन्होंने एक सिलसिला लिखिया डॉक्टर तरुण अग्रवाल दे नाल दिल दे धड़कन बारे बहुत ही वधिया जानकारी सांझी कीती गई, कहिंदे साडा बहुत सारा ज्ञान विच वाधा होया। डॉक्टर साहब जी दी खास इंटरव्यू सुन के असी डॉक्टर साहब दा कहिंदे धन्नवाद करते हां।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी साढ़े प्रोग्राम पसंद करने वास्ते, और जिहड़ा तुसी डॉक्टर साहब का धन्नवाद किया है, यकीन करियो साड़ी जिहड़ी टीम है साढ़े जिहड़े साथी ने डॉक्टर साहब तक थोड़ा सुनेहा जरूर
0: जी
1: पहुँचाएंगे।
0: बिल्कुल। ते इस दे नाल लिखिया है कि तुसी एक मुख्तियार सिंह कविश्री बाबा बंदा सिंह बहादुर उते सानू सुनाई सीगी,
1: जी जी
0: कहिंदे बड़ा ही आनंद आया।
1: जी
0: 11 मई नू कहिंदे कवि सभा सुनी, बहुत ही खूबसूरत रंग बनया, समूह कवियां ने कहिंदे आनंद ही आ गया सारे कवियां दी कवितावां सुन के।
1: जी
0: प्रोग्राम फैमिली नंबर वन दिलों तारीफ करदे हां असी इस प्रोग्राम दी। बाकी आप जी दे केंद्र तो सारे प्रोग्राम बहुत ही वधिया ते जानकारी सिक्ख्या भरपूर हुंदे ने, इस लई समूह स्टाफ आकाशवाणी जलंधर दा दिलों धन्नवाद करदे हां जी। परमात्मा अग्गे अरदास करदे हां कि आकाशवाणी जलंधर स्टाफ नू सदा चढ़दी कला विच रखे।
1: देखो इन्होंने किन्ने विस्तार दे नाल खत लिखिया सी और किन्ने विस्तार दे नाल साडे वक्ख-वक्ख सिलसिले जिहड़े प्रोग्रामां दे पेश कीते गए उन्होंने पसंद किया है। मुख्तियार सिंह दी कविश्री इन्होंने सुनी, बाब प्रसंग सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दा, उन्होंने पसंद आया। सारे प्रोग्राम पसंद करने वास्ते, कवि सभा पसंद करने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। सानू इसे तरह खत लिखते रहो और सानू अपनी जानकारी प्रोग्रामां दे बारे विच इसे तरह लिख के भेजते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: पिंड झंझेड़ी तहसील खरड़ जिला साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो
1: जी
0: लियाकत अली, निशा, शाहीन, यासमीन ते अरमान मलिक लिख रहे ने कि प्यार परी सत श्री अकाल, 2 तरीक नूं तुहाडी चिट्ठी मिली, प्रोग्राम सुनिया बहुत वधिया लग्या, सारियां चिट्ठियां दे जवाब बहुत ही वधिया तरीके नाल दित्ते गए, इस तों बाद विरसे दी संभाल बारे प्रोग्राम सुन के भी बहुत चंगी जानकारी मिली। इस वेले कहिंदे जदों मैं ईमेल लिख रहा वसदे बड़े प्रोग्राम नाल नाल चल रहा ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤੂ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋਨ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
1: ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੇ
1: ਰੁੱਤ
0: ਫਿਰ
1: ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ
0: ਅਸੀਂ
1: ਹੈ।
0: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਤਾਂ ਕਿ
1: ਵਸਦੇ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਵੇੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ
0: ਜੀ
1: ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ
0: ਹਾਂ
1: ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸੱਤੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤੂ,
1: ਜੀ
0: ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਓ,
1: ਜੀ
0: ਕਹਿੰਦੇ
1: ਇਹ
0: ਤੁਹਾਡੇ
1: ਦੇਖੋ
0: ਅਸੀਂ
1: ਬਹੁਤ
0: ਬਹੁਤ
1: ਸੋਹਣੇ,
0: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ
0: ਜੀ,
1: ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਝੰਝੇੜੀ ਤੋਂ,
0: ਜੀ
1: ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ।
0: ਜੀ
1: ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤੂ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ

0: कभी तो हंसाए।
1: सुनते अगला गीत, आशा भोसले ते बप्पी लहरी दी आवाज़ां च, फिल्म नमक हलाल तों।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।
4: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश

0: करीबन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाश समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है।

एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितुआंग को गिरफ्तार किया है। थान सितुआंग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है।

मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आहा, सच्ची सवेर हो गई। ए सिग्नेचर ट्यून रोजाना ही बड़ी चंगी लगती है। हाथ च दुद्ध डोलू ते मोड़े दे बैग विच एक छोटा जिहा ट्रांजिस्टर लैके हर रोज सवेरे निकल जाता।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है।

0: मैं राजन गुप्ते का ना जो नवा अनाउंसर आया मैं उसनों मिलना चाहना है।
1: उधर चला गया
0: तो फिर हूँ कदों आसती ड्यूटी?
1: एक मिनट सर, ड्यूटी चार्ट देख के दसता।
0: चारे पासे कोई जाने पछाने नहीं, हर चेहरा अजनबी लगता मैनू इतने, इतों तक कि इंद्रेश भी नहीं जिहड़ा इन्हां नूं कहिंदा कि तुसीं इन्हां नूं नहीं पछाणदे। ओए ओए की हो रहा, बंद करो उन्हूं, कहो इन्हां नूं रिकॉर्ड ट्रैक बैक कर रहा है। कई साल पहला मैं उस उपर मार कर दिता सी ते सुट देन लिए गया सी। प्लीज इन्हां नूं रोको
1: जनाब, प्लीज तुसी चीको नहीं, बाहर जाओ।

सॉरी पर आज शायद मेरे बोलन का तरीका गलत सी। सॉरी। लंबा कॉरिडोर, दोहां पासे दीवार ते लगियां नेम प्लेट्स, अनजाने अनपछाते ना, कोई भी नहीं जड़ा जड़ा हस के प्यार नाल कहंदा, कैसे हो जगमोहन पा, की हाल है थोड़ा जगमोहन सर।

नहीं नहीं नहीं इंज नहीं, ठीक तरीके नाल साफ साफ लिखना पवेगा। हाँ, स्वरन सुरफा हसी हसी सारे सुरफे ही तो हैं, किसे भी तारुफ तो सखने जैसे नवे नाम हो गए हैं। सुरफा मैं जगमोहन, जन 1934 फर्स्ट डिविजन विच मैट्रिक करके मैं जगमोहन जिसने 34 साल आकाश

अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगूबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandrakaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे की तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने

0: बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatts.

0: जी दोस्त, तेरे बिना ना गुजारा वे। बिल्कुल जी, ये तेरे बिना गुजारा हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, और तुहाडे सारयां तों बिना ये प्रोग्राम दा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे करके तुसीं इस प्रोग्राम च पहुंच जाना है टाइम कढ के, क्योंकि ये प्रोग्राम दा वैसे तो वक्त बहुत ज़्यादा 1 बजे तक है। तुसीं आराम नाल प्रोग्राम सुनो भी और इस प्रोग्राम दे विच अपनी शिरकत करो भी। 0181 3421 171 नंबर डायल करके। लो जी दोस्त आ गए ने, देखिए जी केड़े दोस्त ने। हेलो
1: हेलो साहब, सर मैं नमस्कार,
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं डेरा कॉलोनी फाइल का धर्मा सागर बोल रहा हूँ।
0: जी जी धर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, तुहाडा प्रोग्राम एंजॉय करने बहुत वधिया चल रहा है।
0: क्या बात है जी, प्रोग्राम नू तुसीं पहले कॉलर बने हो, तो ये ना कहो कि हुण मेरी कॉल लग गई है तो हुण मैं बाकियां दी कॉल नहीं सुननी। नींद नहीं आती है तो फिर कोई गल
1: नहीं।
0: अज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: नरेंद्र बीजा का सुना दो सर जी।
0: केड़ा गीत सुनना चाहते हो?

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात तुसी 1 बजे तक सुनते रहोगे और तुसी इस प्रोग्राम दे विच पहुंच सकते हो 0181-2342-174 नंबर डायल करके। और जेडे दोस्त सानू व्हाट्सएप मैसेज करना चाहुंदे ने 94-655-3607 इस नंबर दे अपने तुसी व्हाट्सएप मैसेज भेज के अपनी पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो प्रोग्राम सौगात दे विच। लो जी, कॉलर आए ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी, राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत है।
0: राजू जी, अज प्रोग्राम सौगात दे भी तुसी पहुंचे हो, तो ये दसो कि अज पूरा दिन किवें बताया फिर?
1: दिन बस सर जी, बाहर बैठे रहे, काम दे दरख्त दे थले, फोन आ गया, काम दे चले गए।
0: क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मेहनत जड़ियां उना करके ही सारा कुछ होंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: इंसान मेहनत करे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है।
1: देखो जी, असि तो फिर भी छावां च बैठ जांदे, जिहड़े सारा दिन धुप्प च दिहाड़ी वाले काम करदे बंदे विचारे।
0: उही तो गल है ना जी। वैसे तो हर तरह का जिहड़ा काम है वह मेहनत दे नाल ही है, चाहे कोई अंदर बैठे चाहे बाहर बैठे।
1: परमात्मा भी मदद करदा जी, मेहनत करने वाले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ
1: ਕਿਹੜੀ
0: ਮਿਹਨਤ
1: ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ?
0: ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰਾਜੂ ਜੀ?

0: जी दोस्तों, बूहे जेलदार मैं ना बच दी। गल सही है जी, गर्मी का बुखार जो तो हो जाता है ना, फिर कितों बचना है? और औखा हो जाता बचना फिर, जो तो जेलदार साहब अगे आ जाण फिर तो वाकई जी औखा हो ही जाना है। प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, सौगात प्रोग्राम से दोस्तों तुसी भी पहुँच सकते हो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: रघुवंत
0: जी बोल रहे हो? मैं हाँ जी,
1: गुरदासपुर
0: दोबारा दसो, गुरदासपुर तो कहे साहब बोल रहे ने? चलो स्वागत स्वागत है जी प्रोग्राम च। केड़ा गीत लेके आए हो आज फरमाइश? रणजीत बाबा की आवाज दे गीत सुनाने हैं तुहानू। शुक्रिया जी कॉल करन दे लई। लो जी साडे दोस्त जिन्होंने सानू फरमाइश भेजी है इसे गीत नू सुनन दे लई, मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन्होंने सानू फरमाइश भेजी सी। और कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बेटा बजाज ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त मित्र ने जिन्होंने सानू मैसेज भेजिया वट्सअप दे राही। ते अगली फरमाइश है जी साढ़े को आदर्श नगर मलोड़ पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा ते निवान शर्मा, उन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किया। तो ये साढ़े दोस्त आए ने जी जिन्होंने बड़े ही देर बाद साढ़े को मैसेज भेजे। सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा दे इन्हां दे परिवार दे बहुत सारे दोस्त। लो सुनते हैं जी इन्हां सब दी फरमाइश से रणजीत बावा दी आवाज़ च ये खूबसूरत गीत।

जी दोस्तों, सचमुच मैनू फिर दोबारा 10 गल्लां लाहौर दीआं। गल तां सही है जी, जदों उह इक भैड़ा दौर सी उस वेले जदों वंड होई, और उस वेले जिहड़ियां गल्लां बातां उत्थे दीआं उत्थे रह गईआं, और उह मुड़ मुड़ याद जदों आउंदीआं ने उस वेले, फिर आपां बापू जी तों सुणदे आं कि किवें असीं उत्थे रहिंदे सी और किवें किवें की होया। खैर जी, असीं उह मंजर नूं दुबारा याद तां नहीं करना चाहुंदे, पर वह मंजर वाकई जी बड़ा ही दर्दनाक सी। प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, सौगात प्रोग्राम च साढ़े दोस्त पहुंचे ने, देखिए जी किहड़े दोस्त आए ने। हैलो हैलो हैलो हैलो, लो जी आई भी ते अपनी फोन कॉल। हैलो, चलो दोबारा फिर आएंगे तो फिर गलबात करेंगे इन्हां दे नाल, पर कुछ वट्सएप मैसेज शामिल कर लेने जब तक। आप करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुछो कैंचियां बठिंडा तो, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजीत, इन्हां दे परिवार के होर बहुत सारे दोस्त ने, और ये साढ़े दोस्त ने जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं श्याम शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या आपने प्रोग्राम व्हाट्सएप छोड़ दिया है, सिर्फ कॉल ही करनी है, कॉल हमारे मिलती नहीं है, आपसे बात नहीं होती है, इसके लिए थैंक यू। अरे दोस्त, आपने ना तो अपना नाम बताया, ना ही आपने हमने को व्हाट्सएप छोड़ा है। व्हाट्सएप अभी भी चल रहा है, हम दोस्तों के नाम शामिल कर रहे हैं, इसलिए आप अपना नाम भी बताइए और आप हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल कॉल लगाइए, आपकी कॉल जरूर लगेगी। लो जी, सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर तो इन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया, तो ये साढ़े

लक्ष्मी जी, सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतिशा संधू ते इन्हां दे परिवार दे बहुत सारे दोस्त ने गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो इन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किया। लो जी सारे की फरमाइश गुरदास मान की आवाज़ सुनदे हैं जी, उन्हां दी आवाज़ दे विच गीत।

0: जी दोस्तों, सचमुच असीं तेरे शहर नूं सलाम कर चले हैं। वैसे तो इसी तरह दियां जदों यादां पिछे मुड़ जाण ना, उस वेले फिर इंसान थोड़ा जा मायूस हो जांदा है। पर आपस दे विच प्यार तकरार तो हुंदी रहिंदी है, पर सदा लई विछोड़ा ये बहुत ही दुखदाई हुंदा है। इसी तरह मुहब्बत इंसान दी जिहड़ी है वो एक जिंद जान है, होनी चाहीदी है, पर विछोड़ा जिहड़ा है इस तरह का दुखदाई नहीं होना चाहिए। लो जी कॉलर आए नहीं, इन्होंने पूछते हैं जी। हेलो
1: हेलो, नमस्कार शिवम शर्मा जी।
0: जी, नमस्कार जी, की हाल चाल नहीं, कौन बोल रहे हो?
1: बहुत बढ़िया जी। श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो फकीर चंद रसगनिया जी।
0: क्या बात है फकीर चंद रसगनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: असी तो थोड़े शहर दे विच पहुंच गए हैं।
0: आए
1: हाँ जी,
0: हाय हाय हाय,
1: जलंधर दे विच। हाँ जी, असी गुरदास मान जी कहते कहते सलाम कर चले हैं थोनू।
0: वो गंदे सलाम कर चले हैं, पर तुसी साडे
1: असी
0: शहर
1: थोड़े शहर
0: पहुंच
1: दे
0: गए
1: विच
0: हो।
1: जलंधर पहुंच एंट्री मार के।
0: आए हाय, क्या ही
1: हाँ
0: बात
1: जी,
0: है। गल वैसे सही है जी कि ये जड़ा ना प्यार मुहब्बत ही एवं तरह ही बनी रहनी चाहिए है। पर
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जिमें गुरदास मान साहब ते गल्लां बातां कर रहे सन कि असी तेरे शहर दी सलाम कर चले हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ते इसे तरह दा सलाम तुसी सानू ऐदा नहीं करना, असी तो थोड़ा स्वागत करना है हमेशा।
1: नहीं, सही गल है, बिल्कुल सही। थोड़ी गल सी, होशियार श्याम शर्मा जी, तुसी कह रहे थे ना एक मतलब बंदे दे विच गुमान आ जाता है।
0: हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी, गुमान वाकई सही गल है। मैं कई वेखे हैं बंदे, उन्होंने वैसे गुमान आ ही जाता है। जिवें आपां पढ़ाई कर ली, IAS ऑफिसर मतलब
0: आईएएस
1: परीक्षा
0: अफसर
1: दित्ता
0: बन
1: जी,
0: गए।
1: ते जो होर कोई डॉक्टर बन गया, ते उन्हां लड़कियां नूं भी खैर गुमान आ जाता है। उन्हां नूं शुकराना अदा करना चाहिए आपदे माँ प्यो का, देखो जी इन्हां दी कामयाबी है मेरे पिछे।
0: बिल्कुल, देखो ना, माँ प्यो दी कामयाबी तो बिना तो बच्चा जिहड़ा है वो अगे वध ही नहीं सकदा, और उस दे नाल नाल
1: बाकी
0: उहदे दोस्त मित्र भी हुंदे ने।
1: बच्ची दा ही फर्ज बनदा ना माँ प्यो दी सेवा करना ही, है ना, उन्हां दी
0: बिल्कुल
1: इज्जत
0: बिल्कुल, बच्चे दा तां देखो फर्ज बनदा ही है कि माँ प्यो दी सेवा करे। माँ प्यो ने थोड़ा कीता, ज्यादा कीता, पर बच्चे जिहड़े है वो इस चीज़ नूं समझदे हैं या नहीं समझदे तो उन्हां दी समझ दे उपर है।
1: का। हाँ जी, हाँ जी, ते एक कहंदे गर्मी गुर्मी बहुत पै रही है जी। हाँ जी,
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखो जी, गर्मी का भी देखो हुण माहौल बनया
1: गर्मी
0: होया
1: दे विच
0: पूरा।
1: गर शाम शर्मा जी, गर्मी दे विच एक आपां नूं नींबू पानी पीना चाहिदा है। ये जिहड़े ठंडे ठुंडे है कोल्ड ड्रिंक, इन्हां तों थोड़ा जिहा परहेज रखे तो बंदा वधिया है। हाँ जी, जिवें
0: बिल्कुल
1: पुराने समें दे विच असीं पिंड विच रहिंदे सी ते

0: जी दोस्तों, गल दिल दी दस सज्जना झूठे लारियां च की रखिया। क्या बात है जी, हरजीत हरमन की आवाज़ दे विच गीत सुन रहे सी तुसी ते प्रोग्राम सौगात दा वेला। हले तां तकरीबन तकरीबन 50 मिनट दा पिया। जिन्हां दोस्तां ने हले तक सानूं कॉल नहीं कीती है, जरूर कॉल करो। 0181-2342-171 नंबर डायल करो और इस प्रोग्राम च पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकदे हो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च, कौन बोल रहे हो? जी जी प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। लो जी तुहाडे पिंड पहुंच गए हैं ते हुण तुहाडे कोल बह के असीं मंजे ते गल्लां बातां तुहाडे नाल कर रहे हैं। किवें दा लग रिहा अज फिर?
1: वधिया लग रिहा।
0: हां जी दोबारा दसो। कल का काम है ना, अज ही नबेड़ देना चाहिए। कल का क्या ही बात है जी, गल बिलकुल सही कही है तुसी प्रीतम जी, पर हो जांदा किसे वेले मजबूरी। अनगहली नहीं करनी चाहिए, गल बिलकुल ठीक है प्रीतम जी, कि जिहड़ी काम है वह आपां नूं पहले तरजीह दे तौर ते काम उस नूं कर देना चाहिए। अज फिर किहड़ी फरमाइश लैके आए हो प्रीतम जी?
1: ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣਾ ਪਹਿਲੀ ਕੌਲ ਚਲੋ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾ।

0: जी दोस्तों, तुही की कर दे जी, तेनू याद कर दे हैं। क्या बात है जी गल सही है जी। ये कोई ना कोई किसी ना किसी ने याद कर रहा होना, तो वो पूछ रहे ने तुही की कर दे जी, तेनू याद कर रहे हैं। गल सही है जी। कोई कह दिंदा जी तेनू याद तो करा जे भुलिया होव। इस करके ये प्यार मुहब्बत दी गल है, तो प्यार मुहब्बत वाले ही जानते हैं। पर साढ़े को कॉलर आ गए ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: राम प्रसाद बोलता, देख देख तो पठानकोट भगवान।
0: बिल्कुल राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी।
0: राम प्रसाद जी, अज जिवें मैं गल कर रहा सी कि इतवार है, संडे है,
1: हाँ
0: अज
1: जी,
0: पूरा दिन किवें बिताया फिर? अज पूरा दिन
1: दिन बढ़िया रहा,
0: काम सारे
1: धुप बड़ी
0: नबेड़ते
1: थी
0: अज
1: अज,
0: दे।
1: पर बहुत ही बाहर तो निकले नहीं गया, बस
0: धुप बहुत सी।
1: फिर अंदर के रेडियो सुनते रहे
0: आए हाय हाय, क्या ही बात है जी। ये चंगा
1: नाले।
0: काम
1: हाँ
0: कीता जे,
1: जी, और
0: ये भी चंगा काम कीता। मैं क्या तुसी
1: रेडियो सुन लिया, जा कोई न्यूज़ पढ़ के न्यूज़ या रेडियो तो न्यूज़ सुन ली।
0: देखो, रेडियो जो सुनते हो ये भी एक तो जानकारी का खजाना है।
1: बाकी छोटे बच्चे घर, बच्चे भी घर होंगे, रौनक लगी होंगी।
0: हाँ, इतवार में तो फिर देखो ना जी, सारे घर से रौनक लगिया हुई है। अज फिर तुम साढ़े प्रोग्राम च कड़ी रौनक लगा रहे हो?
1: वधिया जा गीत सुना दो, तेनू दिल दे विच बिछाया ही पर तू की जाने, तेनू
0: गलत,
1: पलकां विच बिठाया ही पर तू
0: ये गल
1: जाने।
0: सही है राम प्रसाद जी, तेनू दिल दे विच बसाया है पर तू की जाने। जिन्हों बसाया वो हम कितों बताओ, वो तो जानता ही नहीं कुछ भी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: ते तुसी भी कोई इदां दा वाकया दस दियो कि तेनू दिल दे विच बसाया है। तुसी किनू दिल दे विच बसाया है?
1: मैं, हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: एक ना मेरा फ्रेंड ही,
0: हाँ जी।
1: उधर ना बड़ा मेरा ही प्यारी,
0: अच्छा जी,
1: वो अपने आप ही मिलना छट गया, पता नहीं की गल, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं,
0: कोई मजबूरी हो
1: पता नहीं
0: सकती
1: क्यों
0: होगी,
1: छट
0: है
1: गया,
0: जी।
1: पता नहीं क्यों छट गया, आपे आना बंद हो गया, नहीं उन्हें कुछ किया भी, कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ,
0: पर भाई साहब रेडियो सुनते ने?
1: रेडियो तो नहीं सुनते हो,
0: अच्छा,
1: एक बारी मिले थी, मैं तुम क्यों मेरे को आ जाना छटता, कहता जी मेरे घर वाल नहीं पसंद करती।
0: ये भी हो जाता जी किसी वेले, घर वालियां पसंद नहीं करदियां तुहाडियां जिहड़ियां दोस्तियां हुंदियां ना बाहर, वो कहिंदियां कि मेरा टाइम खा गया
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलो ये भी गल है जी, जे सवाणी पसंद नहीं करदी ते सानू तो फिर उहदे मुताबिक ही करना पैणा सारा काम, है ते दोस्ती दी दी तुसी त्याग कर दित्ता तुसी, है। लो जी, सुनाने हैं तुहानू राम प्रसाद जी ये गीत।

0: जी दोस्तों, तेनू दिल दे विच पसाया है पर तू की जाने। बिल्कुल सही गल है जी, ये आपस दे विच दोस्त सन, लेकिन थोड़ी बहुत जदों घरों हाजरी लगनी बंद हो जाए ना, उस वेले फिर ये भी हो जाता है कि भाई उस दोस्त ने मिलना बंद कर दे। तो लो जी, आपस दे विच माड़िया मोटिया गल्लां बातां हो गई, पर साढ़े कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਸਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ

0: जी दोस्तों, पी की जान वाली ये हाई नहीं किन्ना चेर लाएंगी। बिल्कुल जी, उस वेले तो फिर मैं किया ना, दिल तक तक करता है कि सुहाणी ने जाना है तो फिर कदों आएगी, क्योंकि पेके जाके तो फिर सुहाणी का भी जी लग जाता है, क्योंकि जदों सारे मिल के गल्लां बातें करते हैं, भैन भरा माँ प्यो सब कट्ठे हो जाते हैं। लो जी, पर कॉलर आ गए ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो
1: हाँ जी, नमस्कार शर्मा जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: भूषण कटारिया मलवदपुर मोहल्ला सर।
0: जी जी भूषण कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: मेहरबानी जी।
0: भूषण कटारिया जी साढ़े को पहुंचते हैं बिल्कुल आखिरले डब्बे दे विच बैठ दे लई, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: मैं क्या आखिरला डब्बा फट दे जो भी आने हो साढ़े को। बिल्कुल सही गल है जी, हो जाता जी किसी वेले इदा।
1: हाँ जी हाँ
0: जी। अज कि फरमाइश लेके आए हो?
1: हरजीत शर्मा दा सुना दो तजर्बा जी।
0: लो जी सुनाने जी, तुहानू शुक्रिया जी कॉल करन दे लई। लो जी साडे साडे दोस्त जिन्होंने सानू फरमाइश की है, उस तो पहला जी सुखदीप सिंह, नरिंदर कौर, सन्नी मन्नी काका, बिट्टू लाडी, मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो इन्होंने सानू वट्सअप मैसेज किया है, तो मोहन चंद्र जी जेडे साडे दोस्त USA तो उन्होंने भी साड़ी जी है वह वट्सअप मैसेज शामिल हो गया। लो जी सुनाने हरजीत हरमन की आवाज़ के पंजेबा।

जी दोस्तों, भावें बोल तो चाहे ना बोल, बस अखियां दे कोल है जी। ये तो असी प्रोग्राम दे विच गीत दो लच्छियां दा, ते मैनू कॉल आई साडे दोस्त USA तो सन, कहिंदे कि मैनू नछत्तर गिल दी आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ। लो जी, उन्हां नाल गलबात हो गई, लेकिन फोन जिहड़ा है वह ज़्यादातर गलबात अगे नहीं वधा सके, लेकिन गीत की फरमाइश कर गए फटाफट। कहिंदे नछत्तर गिल की आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ। लो जी, नछत्तर गिल की आवाज़ दे विच गीत तुहाडे सारयां दे लई उन्हां वल्लों।

0: जी दोस्तों, साडे कॉलर अज दे प्रोग्राम दे आखरी कॉलर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: बोल
0: तरसेम जी दसूए तो बोल रहे हो, ते अज दे तुसी आखरी कॉलर हो। चलण दी यही गीत तुहाडी फरमाइश।
1: 11 बजे
0: अच्छा, 11 बजे लगे हुए? ओहो, क्या बात है जी। 1-2 घंटे फिर तो हो गए तुहानू साडे प्रोग्राम च ट्राई करदे नू, है? चलो ठीक है तरसेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो फरमाइश यही चलन दिने जी, 76 गिल की आवाज के, है? शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।

मत कहां लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रह ना बिचारो, रथ ना सो न गास सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न बीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओस न कोट न छोटा, कर्त बिका दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्ट जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपतनाथ।

खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देव अर दानव, एक तिल ताको मर्म न पावत, प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जनता के दर्श समावत, इसे त्याग आन को जाचा, मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूर

आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरियो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन

सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी साजन मीत सखा हर बंदप जीतान प्रभ प्राण अदारी।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुवे सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जानम जानम दी सजन सच्चा पाते सा हो सिर सहादा

सजन सच्चा पातशाहु सिर साहांदा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा।

ज्यो छुट्टड़ घर घर फेरा दोह चारण बदनाव नानक गुरमुख बख्शिया है।

गुण गावा प्यारे नेता, गुरमुख ब्रह्म पाओ गया, हर सेवह से पुरख, जिना हर तुद माया।

0: मैं हर दर्शन सुख होई। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए।
1: सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सह।

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरियाय करनो निध्यावै ताय। सब थाई होए सहाय। दस

चंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहेगुरु बोलो जे सिखां दा मन नीमा